0: जो देते हैं वही पाते हैं। अंग्रेजी में आपने कई बार सुना होगा, यू रीप व्हाट यू सो और व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा दिए गए विचार, भावनाएं और कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज के पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगरवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2026 के अगस्त महीने के आज 7 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज के हमारी पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी थांगजंग तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रामा और मार्दो जिर्दो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे पहले प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा से

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत।

6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। 7:35 पर प्रसारित होगा तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदा बहार।

और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर।

8:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार।

9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे फिर से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशनार्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग। लेकर आया हूं प्रेम, शांति और विश्वास से भरा हुआ आपका अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्ति गीत। दोस्तों, आज का ये पावन सफर समर्पित है प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रेम, दया, क्षमा और मानवता के संदेश के प्रतीक है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें दूसरों के लिए करुणा हो, जरूरतमंदों के लिए सहायता का भाव हो और हर इंसान

इंसान के प्रति सम्मान हो। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखने वालों के जीवन में हमेशा आशा की एक नई किरण बनी रहती है। श्रोताओं, प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हमारे दिल और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संबंध है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो मन को शांति और आत्मा को नई शक्ति मिलती है। और आज के इस विशेष भक्ति संगीत कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत हाबुंग जोसवा और पार्टी की श्रद्धा और विश्वास से भरी मधुर प्रस्तुति में। तो आइए श्रोताओं, अपने दिल को प्रार्थना से जोड़िए, मन को प्रभु यीशु के प्रेम से भर लीजिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत। श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि नफरत को प्रेम से और अंधकार को विश्वास की रोशनी से दूर किया जा सकता है।

दोस्तों इसी के साथ ये आज का भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुप्रभात दोस्तों, नई सुबह नई उमंग और एक फ्रेश सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो सुबह सवेरे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त कार्ग और आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसी शुरुआत जो आपके दिन को बना देगी हेल्दी, एनर्जेटिक और स्ट्रेस फ्री। दोस्तों, अगर सुबह की शुरुआत सही हो जाए तो पूरा दिन खुद ब खुद शानदार बन जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम में हम रोज लेकर आते हैं योग के आसान और असरदार आसन और कुछ हेल्थ टिप्स जो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए ताकि आप रहे फिट, एक्टिव और हमेशा खुश। दोस्तों, आज के इस योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ाने वाले कुछ योग के बारे में।

में, क्योंकि दोस्तों आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल, सोशल मीडिया, स्ट्रेस, और ऐसे में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर रोज थोड़ा सा योग कर लिया जाए तो आपका फोकस, मेमोरी और थिंकिंग पावर तीनों ही बेहतर हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है पद्मासन। ये ध्यान की मुद्रा है। इसे करने के लिए जमीन पर बैठ जाए, दोनों पैरों को उल्टी जांघ पर रखें, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके फायदे हैं, मन शांत होता है, एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है।

अगला है ब्रह्मारी प्राणायाम। इसे करने के लिए आंखें बंद करें और कानों को हल्के से बंद करें। गहरी सांस लेकर ड्रम की आवाज के साथ छोड़ें। 5 से 7 बार इसे करें। इससे दिमाग को तुरंत शांत मिलता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है।

अगला है वृक्षासन। ये संतुलन का आसन है। इसे करने के लिए एक पैर पर खड़े हो जाएं, दूसरे पैर को जांग पर रखें, हाथों को ऊपर जोड़ लें। इससे शरीर का बैलेंस सुधरता है, फोकस और स्टेबिलिटी बढ़ाता है।

अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए एक नाक से सांस लें और दूसरी से छोड़ें और इसे फिर से दूसरी दिशा में दोहराएं। 5 से 10 मिनट तक इसे करें। इसके फायदे हैं, दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ाता है, सोचने और समझने की क्षमता बेहतर होती है।

अगला है त्रातक। ये ध्यान केंद्रित करने की क्रिया है। इसे करने के लिए सामने एक दीपक या बिंदु रखें, बिना पलक झपकाए उस पर ध्यान केंद्रित करें। 1 से 2 मिनट से शुरुआत करें। इसके फायदे हैं, कंसंट्रेशन पावर तेज होती है, आंखों और दिमाग दोनों को फायदा होता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा टिप्स, योग हमेशा सुबह करें, मोबाइल से दूरी बनाकर अभ्यास करें, रोज 15 से 20 मिनट का समय जरूर लें। याद रखिए, एकाग्रता कोई जन्मजात चीज नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे आप रोज के अभ्यास से मजबूत बना सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए और अपने मन को बनाए और भी पावरफुल। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के अगले योग सेगमेंट में। तब तक फोकस रहिए और हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, फिलहाल सुबह सवेरे के इस अगले भाग में सुनते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म अपनापन से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में। दोस्तों अब रुक करते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अंग की जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारे कान की। कान सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर का बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कान की कैसे हम इसे स्वस्थ रखें, आइए देखते हैं। कानों की देखभाल क्यों जरूरी है, सबसे पहले आइए इसे जानते हैं। सुनने की क्षमता को बनाए रखने के लिए, जी हाँ, अगर हम कानों का ध्यान नहीं रखते तो धीरे धीरे हियरिंग पावर कम हो सकती है। अगला है इन्फेक्शन से बचाव के लिए, गंदगी, पानी या बैक्टीरिया की वजह से कान में इन्फेक्शन हो सकता है। अगला है संतुलन बनाए रखने के लिए, कान के अंदर का हिस्सा शरीर के बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इन चीजों के लिए हमें कानों की देखभाल बहुत जरूरी है। तो आइए कानों की देखभाल के आसान और जरूरी कुछ टिप्स देखते हैं। पहला है कानों की सफाई सही तरीके से करें, कान को बाहर से साफ कपड़े से ही साफ करें, कॉटन बर्ड्स, पीन या माचिस की तीले अंदर ना डालें, इससे कान का फर्दा यानी एयर ड्रम खराब हो सकता है। तेज आवाज से बचें, हेडफोन या ईयरफोन में बहुत तेज आवाज में गाने ना सुने, लंबे समय तक लगातार सुनने से बचे, इससे हियरिंग लॉस का खतरा बढ़ता है। कानों को सूखा रखें, नहाने या तैराकी के बाद कानों में पानी ना रहने दें, हल्के से तौलियों से बाहर से सुखाएं, इससे फंगल इन्फेक्शन से बचाव होता है।

दर्द या समस्या को नजरअंदाज ना करें। अगर कान में दर्द, खुजली, आवाज कम सुनाई दे या पानी पस आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खुद से दवा ना डालें, बिना डॉक्टर की सलाह के एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें, गलत दवा नुकसान कर सकती है। सर्दी खांसी का सही इलाज करें, लंबे समय तक जुकाम रहने से इन्फेक्शन कान तक पहुंच सकता है। प्राणायाम भी है फायदेमंद, जैसे अनुलोम विलोम, ब्रह्मारी प्राणायाम, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और खानों को फायदा मिलता है। दोस्तों, कानों की सही देखभाल के फायदे हैं, सुनने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है, संक्रमण और दर्द से बचाव मिलता है, शरीर का संतुलन सही रहता है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है। याद रखिए दोस्तों, कानों की सही देखभाल हमें हर आवाज को साफ और सुरीली सुनने में मदद करती है, चाहे वह संगीत हो या अपने अपनों की बातें। इसी के साथ खत्म होता है आज का हेल्थ सेगमेंट। फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टिप के साथ। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अपने खानों का खास ख्याल रखिए। तो दोस्तों, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजों में नदिया के पार फिल्म से ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुनेंगे आपात श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर जी रोकना तन प्रोग्राम तमी मलिम बली कपे जापसर नुन तनु भी मिता पतो दो सिरो कपुयु लु कोइन सी दुयुवांग का यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल पार्टिलाइजर्स जेपी नादा है इनकुन अलोहो केर पन्यर डिस्ट्रिक्ट का नेपको कॉलोनी ला पोसा होका क्लाउड बर्स्ट एंड प्लस फ्लड एफेक्टेड एरियाज हो विजिट मला होका एक्सटेंड ऑफ डैमेज में एक्सेस मला हो ongoing relief rehabilitation and restoration effort me review mone hala lokone union minister who personally local residents la families disaster hoka effect ne agi ho interact mala moluka concern la grievances me yanu yabe pa talyane hala lokone ho molumi ezur mala lonene government of india hu arunachal pradesh ka miu atagi ho hembola ho center ka commitment me atula कपाने पॉसिबल असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिहेबिलिटेशन ऑफ एफेक्टेड फैमिलीज में विला हो नॉर्मलसी रिस्टोरेशन में रीजन हो निबा दोकने न पमुची हला लुने होमो का विजिट में मरांपा यूनियन मिनिस्टर हु रिव्यू मीटिंग में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामेन मिनिस्टर्स एमएलएस ला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का आगे हो ईटानगर हो दोने हला लुकोने होका दुकुंदुली होमो अखो जापा दुगला मने हला लुको ने होमो कंसर्न डिपार्टमेंट्स आतामी ऑनगोइंग रिलीफ रिहेबिलिटेशन ला हेल्थ केयर एफर्ट्स मी इंटेंसिफाई मुदपा लोने हला लुको ने इंडिजिनियस पेड एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इनेकुन लरिंग कार्यालय हो तुकोपोसा 3.16 लाख डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डोनेट मला रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट मुदपाविने हला लुको ने हो चेक में ईस्ट सियांग का डिप्टी कमिश्नर सोनालिका जीवानी में फॉर्मली हैंडेड मुबुने हला लुको ने हो का कंट्रीब्यूशन में का रिसीव मिली हो डिप्टी कमिश्नर इंडिजिनियस पेट एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में मोलू का जेनरस ह्यूमेनिटेरियन जेस्टर में टैंक बिला हो ऑर्गेनाइजेशन का हालुग्रा आतंका वेलफेयर पका कमिटमेंट विनेमी एक्नोलेज मने हला लुकोने हॉकी इंडिया की इनेकुन अलोहो अलियन लापिनेता मेंबर इंडियन जूनियर वुमेन्स टीम ऑफ द एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 में अनाउंस मने हला लुकोने होमी अगस्त पुलोका 30 होकला सितंबर पुलोका टाटन लोयपा चाइना का मोगी गंदा हो मकिंदो हला लुकोने हो स्क्वाड हो अलियन लपिने प्लेयर्स हो अन्यता अल्टरनेट प्लेयर्स में मिडफील्डर कैदम सिलेमा चानू है लीड मकिंदो हला लुको ने हो टीम है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कैंप में नीतिपा का अपॉइंटमेंट हेड कोच टीम वाइट का आगे हो मलाला टूर्नामेंट पहली हला लुको ने यूनियन कैबिनेट इनेकुन अलोहो गवर्नर द नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम में टोटल आउटले 23,731 करोड़ रुपीस का आगे हो अप्रूव मुने हला लुको ने हो मीडिया आगे हो का ब्रीफिंग मिली हो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी बैष्णव सी 1.5 लाख जॉब में क्रिएट मकिंदो हला लुको ने गोवर्धन है इंडिया का क्लीन एनर्जी जर्नी का मोमेंट में डिफाइन मुदो हला लुको ने हो सी कंट्री का एबुंडेंट एग्रीकल्चरल रेसिड्यू केटल डंग प्रेस मद म्यूनिशिपल ऑर्गेनिक वेस्ट ला ह्यूबे बायोमास रिसोर्सेस में क्लीन फ्यूएल ऑर्गेनिक मेन्यूर रूरल इनकम ला नेशनल इकोनॉमिक वैल्यू पर ट्रांसफॉर्म मकिंदो हला लुको ने हो सके स्कीम में 2026-27 और 2035-36 लेपा इम्प्लीमेंट मला हो कंप्रेस मेजर पिलर ऑफ इंडिया फ्यूचर एनर्जी मिक्स पा एस्टेब्लिश मकिंदो हला लुने हो सके स्कीम का एम है डोमेस्टिक कंप्रेस बायोगैस में इंक्रीज मला हो सीवीजी प्रोडक्शन है टेनफोल्ड लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो मोबाइलाइज मला हो वाइब्रेंट सर्कुलर बायो इकोनॉमी अक्रॉस द कंट्री में क्रिएट मने हला लोको ने गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी परनेक इनेकुनालो हो एसरी इंडिया का ऑर्गेनाइज मन सेमिनार जियो विजन ईटानगर हो पार्टिसिपेट मोने हला लुको ने होमो का की नॉट एड्रेस हो गवर्नर है एम्फसाइज मला Geographic Information System Technology hu cornerstone of governance in Arunachal Pradesh ho pado kindo hala lone ho informed decision making efficient service delivery la sustainable development me enable makindo hala lone homolune tan state ka unique geographical characteristic rugged mountains dense forests dispersed settlement la extensive international borders innovative and technology driven solution me demand mudo hala lokone si chitan context o geospatial intelligence technological tool kontu mapa effective governance ka essential instrument palido hala lokone future pa strategic roadmap me outlining malala ho si imperative ho department gis platform pa switch kendo ho governor his state geospatial governance platform data me major departments including revenue planning rural development public work forest agriculture disaster management and power pa integrate mukindo hala lokone osuru katan pu lokosne hamkane ka takabata hosisi busi program me limbili kapija pasuru nunu padita daga hang jabi majalo hala kabusne mi tapakindo.

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार, और आगे के कार्यक्रमों को आप सुन पाएंगे हमारे मीडियम वेव चैनल पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: नई सुबह की सुनहरी रोशनी, ताजी हवाओं की महक और देर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका हार्दिक स्वागत है अरुण FM 103.1 MHz पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, बदलती दुनिया के साथ हर पल कुछ नया गत रहा है, ऐसे में दिन की शुरुआत सही और भरोसेमंद जानकारी के साथ हो तो पूरा दिन बेहतर बन जाता है। इसलिए हम लेकर आए हैं देश दुनिया और अपने अरुणाचल प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। तो अगर आपके हाथ में है सुबह की गर्मा गर्म चाय या कॉफी का प्याला, तो उसकी हर चुस्की के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां मिलेगी हर बड़ी खबर, हर जरूरी जानकारी और बेहतरीन प्रस्तुति। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के ताजातरीन राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की विशेष अपील। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय हथकरघा उत्पादों की बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर #GRWM गेट रेडी विथ मी अभियान से जुड़कर भारतीय हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया। जयपुर में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक संपन्न। राजस्थान के जयपुर में ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में औद्योगिक नवाचार, हरित ऊर्जा, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और आपसी औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। भारत ने सतत औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। राहुल गांधी ने शुरू किया आस्क मी एनीथिंग अभियान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने युवाओं को और आम नागरिकों से सीधे संवाद के लिए इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों से रोजगार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र से जुड़े सवाल पूछने का आग्रह किया। एयर इंडिया को मिला नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एयर इंडिया के निदेशक मंडल ने टिवोल्ड गैब्रेमेरियम को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त करने की पुष्टि की। कंपनी का कहना है कि यह नियुक्ति एयरलाइन के विस्तार और आधुनिकीकरण की रणनीति का हिस्सा है। आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका में नए टैरिफ लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए वैश्विक आयात शुल्क आज से प्रभावी हो गई हैं। कई देशों ने इस फैसले पर चिंता जताई है और वैश्विक व्यापार पर इसके असर का आकलन किया जा रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति पर वैश्विक नजर। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच तनाव पर दुनिया के नजर बनी हुई है। प्रमुख देशों ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकलने की अपील की है ताकि क्षेत्रीय संघर्ष और ना बढ़े। अमेरिका के कई राज्यों में जंगल की आग से आपत स्थिति। अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में जंगल की आग लगातार फैल रही है। कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और अग्निशमन दल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों पर नजर। अमेरिका के ओरेगन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत के 36 एथलीट विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल से कई पदकों की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये था आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट्स लैंड ओनर टू क्लियर डेब्रिस कॉज्ड बाय अर्थ कटिंग। दोनी फोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले एनएचए 415 को काफी नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान हाईवे के पास कुछ लोगों द्वारा मिट्टी की खुदाई करने की वजह से हुई है। इसके बाद पापम्पारे जिला प्रशासन ने जमीन की मालिकों को मलबा हटाने का निर्देश दिया है। फारा एथलीट एडमिटेड टू डीपीएस ईटानगर बाय पीएए। अरुणाचल पैरालंपिक एसोसिएशन ने पूर्वी कामेंग जिले के पुरोइक समुदाय की हुनहार पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी बेटी वालांग का दाखिला ईटानगर के एक प्राइवेट स्कूल में कराया है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ नियमित रूप से खेल की ट्रेनिंग भी ले सके। APUTA रिट्रीट्स डिमांड फॉर एनहेंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज। अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिसके अध्यक्ष डॉ इलिदोई और महासचिव डॉ लिगे सोरा थे, गुरुवार को एपीयू के वाइस चांसलर डॉ मिलोरी रॉय मोदी से उनके चैम्बर में मिला। उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी टीचर्स के रिटायरमेंट की उम्र 7 से बढ़ाकर 65 साल करने की APUTA की पुरानी मांग को फिर से दोहराया। DA बोगोंग बांगोट बॉडीज होल्ड मीटिंग ऑन लैंड इश्यूज। अरुणाचल प्रदेश इप्साब डोनेट्स रुपीज 3.16 लाख फॉर फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज इन ईस्ट सियांग। ईस्ट सियांग जिले में हाल ही में आए अचानक बाढ़ से प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी इप्साप ने बुधवार को जिला प्रशासन को राहत और पुनर्वास कार्यों में मदद के लिए 3,16,350 रुपये दान किए। ताकम ज्योति क्लिंचस सिल्वर, आदि नातुंग सिक्योर्स ब्रॉन्ज। अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति और आदि नातुंग ने 30 जुलाई से 3 अगस्त तक जॉर्जिया के बातुमी में आयोजित प्रतिष्ठित बातुमी ओपन इंटरनेशनल वुशू टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता। आइकॉनिक ऑटोमोबाइल्स लॉन्चेस एनहेंस महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। आइकॉनिक ऑटोमोबाइल्स ने गुरुवार को लेकी गांव में अपनी डीलरशिप पर बेहतर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लॉन्च की। इस गाड़ी को DIGP तुम्यामो और मिस अरुणाचल 2025 ताबा जुमसी ने बैंकिंग और फाइनेंस पार्टनर और डीलरशिप अधिकारियों की मौजूदगी में पेश किया। तो दोस्तों, ये था आज का न्यूज सेगमेंट। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कोयला फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग इंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं राजधानी ईटानगर के आज के मौसम का हाल। आज सुबह ईटानगर में मौसम काफी सुहावना है। बादलों की मौजूदगी के कारण वातावरण ठंडा और ताजगी भरा महसूस हो रहा है। तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच है। दोपहर तक तापमान बढ़कर करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, बीच बीच में धूप निकल सकती है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना कम है। आज दिन भर एक दो हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। लगातार पूरे दिन बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन दोपहर और शाम के समय कहीं कहीं फुहारे या गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इसलिए यदि बाहर निकलने का कार्यक्रम हो तो छाता साथ रखना बेहतर रहेगा। शाम के समय मौसम फिर से सुहावना हो जाएगा, बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी और हल्की बारिश की संभावना भी रहेगी। तापमान घटकर लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। तो आज ईटानगर में मौसम रहेगा बादलों की अच्छी मौजूदगी, बीच बीच में हल्की बारिश या बौछारे की संभावना। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और पूरे दिन मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। और अब मौसम की इन ताजा जानकारियों के बाद वक्त है एक खूबसूरत सदाबहार गीत का। बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सदा बहार। आइए इस कार्यक्रम के अंत में एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं। आवाज दी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने फिल्म हम आपके हैं कौन से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
4: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
5: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
6: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
3: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
7: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
8: इस समारोह का मुख्य आकर्षण

0: 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी दावे की प्रक्रिया पारदर्शी आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार उनकी बात सुननी चाहिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज गुड मॉर्निंग आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय द हेडलाइंस सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The Centre has notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
7: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
6: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs, and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate, MDR, on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें
6: Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it, and share it across the country and the world so that the skill and craftsmanship of India's artisans receive global recognition. Minister of Textile will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate the 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as a chief guest with Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita attending the program. The Textiles Ministry said that the function aims to celebrate India's rich handloom heritage and recognize the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. We have more from our correspondent.
5: A major highlight of the celebrations will be the presentation of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon to the handloom weavers for their craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. 4 commemorative postage stamps celebrating the country's rich and diverse handloom weaving traditions will be released on the occasion. 2 publications, Earth Root Thread Al Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025 will also be unveiled during the function. National Handloom Day is observed every year on August 7 to commemorate the Swadeshi movement. According to the Ministry of Textiles, the day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of the country's handloom weavers since its inception in the year 2015. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
6: This is Akashvani giving you the news for quick news updates around the clock. Follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. Agitating Jharkhand students have formed an 11-member team to hold talks with the state government to resolve the issue. The agitation over the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations has entered a crucial phase in Ranchi. We have more from a correspondent.
8: The protest against the alleged irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations entered its 14th day today in Ranchi with 6 students continuing their hunger strike. Last evening, the aspirants took out a flashlight protest march from Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi. The protesters are demanding cancellation of the 14th JPSC Civil Services preliminary examination and independent probe into the alleged irregularities and comprehensive reforms in the JPSC and JSSC. The issue also echoed in the Jharkhand Assembly, where opposition NDA legislators demanded a CBI probe into the alleged irregularities. Mavish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
6: The monsoon remains active across Uttarakhand. The Gangotri and the Yamunotri national highways have been blocked at several locations due to the debris, while water levels in the state's major rivers have risen significantly. Meteorological department has issued a warning of heavy rainfall at isolated places in five hill districts today. We have more from a correspondent.
9: Rainfall over the past 2 days have led to a sharp rise in the water levels of Uttarakhand's major river, with some flowing close to the danger mark. More than 100 rural link roads connecting villages remain closed due to landslides. Meanwhile, the Met Department has issued a yellow alert for heavy rainfall at isolated places in Uttarkashi, Dehradun, Tehri, Rudraprayag and Bageshwar districts today. Chief Secretary Anand Bardhan yesterday reviewed the monsoon situation at the State Emergency Operations Centre. He directed officials to prioritise the reopening of blocked roads, ensure adequate machinery is repositioned in landslide-prone areas, and instructed district magistrates to conduct regular field inspections and closely monitor relief and rescue operations. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
6: India Meteorological Department has predicted heavy rainfall across Kerala. We have more from a correspondent.
10: The red alert that was in force overnight in Pathanamthitta, Kottayam and Idukki districts in Kerala has been downgraded to orange alert today. Orange alert, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall, is also in force in five other districts. The remaining six districts in Kerala under yellow alert, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
6: The overall death toll due to floods in Assam this year has risen to 97. According to latest report, more than 1.68 lakh people remain affected across 15 districts of the state. The affected districts include Golaghat, Shivsagar, Udalguri, Kamrup Metro, Nogaon, Kamrup and Dhemaji. We have more from a correspondent.
4: The Assam State Disaster Management Authority said one flood-related death each was reported from Golaghat and Udalguri district yesterday. The flood situation has improved considerably in the worst-affected districts of Shivsagar, Golaghat, Jorhat and Soraideo, with flood waters receding from most areas. As part of the post-flood response, the government has intensified health camps and medical outreach services in the affected areas to prevent the outbreak of waterborne and vector-borne diseases and to ensure access to health care for affected residents. Meanwhile, the Dhansiri River at Numaligarh continues to flow above the danger level, although no river in the state is currently flowing above the highest flood level. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
6: U.S. President Donald Trump has signed two executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it an unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the U.S. immigration system.
11: We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright. It was close, but a very, very unfortunate decision. So we're making adjustments because it's very unfair. This was done for a different reason. This was done right after the Civil War. This was for the babies of slaves.
6: In badminton, India's Tanvi Sharma will face a compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of the Korea Masters in Assen today. Tanvi progressed to the quarterfinals after defeating fellow Indian Shriyanshi Valishetty in the pre-quarterfinals, while Rakshita advanced to the quarterfinals after beating Japan's Manami Suizu. Meanwhile, Ashmita Chaliha will take on top seed Hina Akechi of Japan in another women's singles quarterfinal. Ashmita progressed to the last eight with a dominant win over South Korea's Kim Min-ji. In the men's doubles quarterfinals, the Indian duo Prithvi Krishnamurthy Roy and Krishna Prasad Garaga will face Malaysia's Man Wei Chong and So Woo Ik for a place in the semifinals. India will face arch rival Pakistan in the marquee match of the 2026 Women's Asia Cup at the Dubai International Cricket Stadium on September 5th. The Asian Cricket Council, ACC, yesterday announced the schedule for the Women's T20 Asia Cup 2026 set to be held in Dubai from August 28 with Thailand facing Hong Kong. The final will be played on September 13th. This will be the sixth edition of the Women's Asia Cup to be played in the T20 format. The West Bengal government is set to officially participate in the center's Har Ghar Tiranga campaign for the first time. Chief Minister Subhendu Adhikari yesterday announced a series of programs to mark Independence Day, including the distribution of 70 lakh national flags across the state. He said the state government is joining the center's initiative with the ideals of nation first and patriotism at its core. The Chief Minister said the distribution of national flags began on the 5th of August. general public have been urged to actively participate in the campaign. The Chief Minister informed necessary guidelines have already been sent to all the district subdivisions, blocks, municipal corporations and municipalities across the state in this regard. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
5: Thank you, Abhishek. RSS Chief Mohan Bhagwat's take on Gen Z is prominently noticed by the dailies. The Indian Express quotes RSS Chief as saying, Gen Z grievances real, protest way of dialogue. Lok Sabha passes bill that clears way for UPI payment fees, headlines the Statesman. The Asian Age in editorial piece, Government Opposition Must Allow Parliament to Function, writes that the continued disruption of parliamentary proceedings that has translated into passage of bills with no debate in the monsoon session presents a no-win situation not only for the opposition and the government, but more importantly for the country as a whole. Prime Minister Modi, Netanyahu review India-Israel strategic ties, discuss West Asia developments, reports the Statesman. Alternative fuel passenger vehicles fast catching up with petrol ones, states the Times of India. And finally, in football news, the Pioneer informs that Gianni Infantino gets support at crisis meeting to remain FIFA president. And with that, it's back to you, Abhishek.
6: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre notifies Act paving way for reservation for ST community in Goa Assembly. Lok Sabha passes bill to authorise government to permit banks to levy charges on UPI transactions. Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. U.S. President Donald Trump signs two executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। मैं हूं आपका अपना आरजे कारग, लेकर हाजिर हूं एक और नई सुबह, नई ऊर्जा और नई जानकारी से भरपूर आपका।

विशाल जनसभा आयोजित हुई। इस सभा में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की शपथ ली। आगे चलकर यही आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा जन आंदोलन बना और पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना की नई लहर फैल गई। वर्ष 1941 गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का निधन। 7 अगस्त 1941 को नोबेल पुरस्कार विजेता महान कवि, साहित्यकार और दार्शनिक रविन्द्रनाथ टैगोर का कोलकाता में निधन हुआ। उन्होंने जनगण मन, जो आज भारत का राष्ट्रगान है, तथा अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ही, की उन्होंने रचना की। 1913 में वे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बने। वर्ष 1947 ध्वज राष्ट्र ध्वज को मिली संविधान सभा की औपचारिक स्वीकृति। स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और उसके सम्मान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। ये वो ऐतिहासिक दौर था जब स्वतंत्रता भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। 1990 मंडल आयोग की सिफारिशों की घोषणा। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इस निर्णय के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये स्वतंत्र भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। आइए रुक करते हैं विश्व इतिहास पर। वर्ष 1782 अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान फर्फल हर्ट स्थापित। 7 अगस्त 1782 को जॉर्ज वाशिंगटन ने फर्फल हर्ट सैन्य सम्मान की स्थापना की। यह सम्मान युद्ध में घायल या वीरगति प्राप्त सैनिकों को दिया जाता है। वर्ष 1947 नॉर्वे के कौन टीकी अभियान की सफलता। 7 अगस्त 1947 को प्रसिद्ध अन्वेषक टोर हेयरडल का कौन टीकी एक्सपेडिशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। उन्होंने प्रशांत महासागर को एक लकड़ी के बेरे पर पार कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में भी लंबी समुद्री यात्री संभव थे। एक्सलेटर छे उपग्रह का प्रक्षेपण। आज ही के दिन अमेरिका ने एक्सप्लोरर 6 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इस उपग्रह ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की शुरुआती तस्वीरें भेजी थी। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ष 1907 को आइवरी कोस्ट स्वतंत्रता हुआ। 7 अगस्त 1907 को पश्चिम अफ्रीका का देश आइवरी कोस्ट, जो अब फ्रांस से स्वतंत्र हुआ। आज भी वहां 7 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो दोस्तों, 7 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रवाद और सामाजिक परिवर्तन की याद दिलाता है। वहीं विश्व इतिहास में यह दिन खोज, विज्ञान, स्वतंत्रता और साहस की अनेक प्रेरणादायक घटनाओं का साक्षी रहा है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम के इस भाग में यह बेहद खूबसूरत गीत फिल्म सिंग इज किंग से।

दोस्तों हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अब अगले भाग में प्रस्तुत है इम्पोर्टेंट डे स्पेशल का। आइए जानते हैं आज यानी

7 अगस्त को भारत और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं? भारत में हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त की तारीख का संबंध 1905 के स्वदेशी आंदोलन से है। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक सभा हुई जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लिया गया। हथकरघा भारतीय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख प्रतीक था, इसलिए इस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा वो पारंपरिक खरगा है जिसे बिजली के बजाय हाथों से चलाया जाता है। इस पर बने कपड़े अपनी सुंदरता, गुणवत्ता और पारंपरिक डिजाइन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों की अपनी विशिष्ट हथकरघा परंपरा है, जैसी बनारसी सिल्क, कांजीवरम सिल्क, पश्मीना शॉल, असम का मूगा और एरी सिल्क, अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक हाथ से बुनी हुई जनजातीय पोशाकें। भारत का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में से एक है। देश भर में लाखों बुनकर और कारीगर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों से तैयार किए गए वस्त्र भारत के सांस्कृतिक विरासत और कला का अनमोल प्रतीक है। दोस्तों, 7 अगस्त हमें याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव केवल बड़े उद्योगों से नहीं बल्कि हमारी मेहनत, बुनकरों, कारीगरों और स्वदेशी परंपराओं से भी मजबूत होती है। आइए इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर संकल्प ले कि हम लोकल को अपनाएंगे, भारतीय बुनकरों का सम्मान करेंगे और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। स्वदेशी अपनाए, बुनकरों की मुस्कान बढ़ाए। इसी संदेश के साथ हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश के समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The center has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the act came into force yesterday, fulfilling a long pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface, UPI, and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate MDR on notified electronic payment modes. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life untied and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
3: Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it and share it across the country and the world so that the skill and craftsmanship of India's artisans receive global recognition. The protest against the alleged irregularities in recruitment exams in Jharkhand entered its 14th day today in Ranchi. Six demonstrators continued their hunger strike in the state capital, Ranchi. The stalemate continues as the student leaders claimed that no invitation was received from the state government till yesterday evening. The ripples of the demonstration reached the Jharkhand Assembly yesterday, with opposition MLAs raising slogans on its premises on the first day of the monsoon session. US President Donald Trump has signed two executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing bird tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the US immigration system. Indian Grandmaster R. Pragananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javokir Sindorov in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. Pragananda maintained the lead throughout the five-day event. And that is the end of this news bulletin.
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
4: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, हर नया दिन लेकर आता है फिल्मी दुनिया की नई हलचल, नई सुर्खियां और नई सरप्राइज। कहीं किसी सुपरस्टार के आने वाली फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है, तो कहीं किसी वेब सीरीज का नया सीजन दर्शकों की वॉच लिस्ट में जगह बना रहा है। और अगर आप भी बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी खबर, सितारों की दिलचस्प गॉसिप, फिल्मों का ईमानदार रिव्यू, ओटीटी की नई रिलीज, ये सब आप जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ फिल्मी गपशप पर, सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के ताजातरीन बॉलीवुड अपडेट्स पर। आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए कई नए हिंदी फिल्में, आज से देश भर के सिनेमाघरों में ओ माय डॉग, आर्यभट्ट, जीरो, हनुमान अंश, जीरियन और डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन रिलीज हो चुकी हैं। फैमिली ड्रामा, बायोफिक, आध्यात्मिक और थ्रिलर इस शुक्रवार दर्शकों के लिए कई अलग अलग विकल्प मौजूद हैं। हनुमान अंश का पहले दिन मिला अच्छा रिस्पांस। आध्यात्मिक विषय पर बनी हनुमान अंश को सुबह की सोच में फैमिली ऑडियंस और धार्मिक दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। गायल की री रिलीज ने जगाई पुरानी यादें। सनी देओल के क्लासिक एक्शन फिल्म गायल आज चुनिंदा सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई। ये री रिलीज बतवारा 1947 के रिलीज से पहले दर्शकों में उत्साह बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। बटवारा 1947 का प्रमोशन तेज। स्वतंत्रता दिवस से पहले रिलीज होने वाली बटवारा 1947 का प्रमोशन अब पूरे देश में तेज हो गया है। फिल्म की स्टारकास्ट लगातार मीडिया इंटरव्यू और प्रमोशनल इवेंट्स में हिस्सा ले रही है। आवारापन 2 का इंतजार बड़ा। इमरान हाशमी के आवारापन 2 अगले हफ्ते रिलीज होगी। फिल्म के गाने और प्रोमो को सोशल मीडिया पर लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दोस्तों, हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौटेंगे बॉलीवुड के और ताजा तरीन अपडेट्स पर। फिलहाल सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाजों में।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। राज कुंद्रा का बयान फिर वायरल। राज कुंद्रा ने कहा कि वे अपने बारे में उड़ने वाली अफवाहों को हर बार नकारते नहीं हैं, क्योंकि कई बार वे हकीकत से ज्यादा दिलचस्प होती है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। माँ के जन्मदिन पर राज कुंद्रा का इमोशनल पोस्ट। राज कुंद्रा ने अपनी माँ के 75वें जन्मदिन पर भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनकी जिंदगी की हर सफलता के पीछे उनकी माँ का योगदान है। पोस्ट पर कई बॉलीवुड कलाकारों ने शुभकामनाएं दी। इंडस्ट्री की नजर अब इंडिपेंडेंस वीकेंड पर। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 14 अगस्त के आसपास रिलीज होने वाली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस टक्कर इस साल की सबसे बड़ी भिड़ंत साबित हो सकती है। नई कंटेंट ड्राइविंग फिल्मों पर बड़ा भरोसा। इस हफ्ते रिलीज हुई कई फिल्मों का बजट अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन उनकी कहानी को लेकर सकारात्मक चर्चा है। ट्रेड विश्लेषकों का मानना है कि अच्छी स्क्रिप्ट वाली फिल्मों को दर्शक लगातार समर्थन दे रहे हैं। सिद्धार्थ का बयान बना चर्चा का विषय। सिद्धार्थ ने अपनी नई वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर के प्रमोशन के दौरान कहा कि वे अपनी बात रखने के लिए किसी की अनुमति की मोहताज नहीं है। उनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। दोस्तों, आइए कार्यक्रम में एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, अब बॉलीवुड के ताजा तरीन अपडेट्स के बाद रुक करते हैं छोटे पर्दे की खबरों के साथ। दोस्तों, आज छोटे पर्दे की दुनिया में कई नई हलचलें देखने को मिली हैं। सबसे पहले है कहानी घर घर की फेम टीना पारिक की शादी की कहानी हुई वायरल। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री टीना पारिक ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने किसी आलीशान होटल या डेस्टिनेशन वेडिंग की बजाय एक आश्रम में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में बेहद सादगी से शादी की थी। उनकी ये प्रेरणादायक कहानी आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उषा नंदकर्णी का भावुक इंटरव्यू चर्चा में। वरिष्ठ अभिनेत्री उषा नंदकर्णी ने अपने जीवन के संघर्षों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि बचपन की कठिनाइयों और लंबे अकेलेपन के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका ये इंटरव्यू टीवी इंडस्ट्री में प्रेरणा का विषय बना हुआ है। आदेश चौधरी बोले, टेलीविजन पहले से काफी बदल चुका है। अभिनेता आदेश चौधरी ने कहा कि अब टीवी कंटेंट पहले की तुलना में अधिक यथार्थवादी और विविध हो गया है। उनके अनुसार दर्शकों की पसंद बदलने के साथ इंडस्ट्री भी लगातार विकसित हो रही है। प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो अलायंस चर्चा में। प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो अलायंस दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। शो में रणनीति, भरोसा और माइंड गेम्स का अनोखा मिश्रण देखने को मिल रहा है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। डिजिटल रियलिटी शो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब युवा दर्शक पारंपरिक टीवी के साथ साथ ओटीटी आधारित रियलिटी शो की ओर भी तेजी से आकर्षित हो रहा है। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस इसी दिशा में नए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, हम लौटेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद और अन्य छोटे पर्दे के अपडेट्स के साथ। बने रहिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दोस्तों, हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद। बने रहिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।
1: अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। टीवी कलाकारों की OTT की ओर बढ़ती दिलचस्पी। कई लोकप्रिय टीवी कलाकार अब वेब सीरीज और OTT प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। इंडस्ट्री में माना जा रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कलाकारों को अधिक विविध भूमिकाएं और रचनात्मक अवसर दे रहे हैं। वीकेंड एपिसोड्स के लिए चैनलों ने बढ़ाई तैयारियां। इस सप्ताहांत TRP बढ़ाने के लिए कई बड़े हिंदी GEC चैनल अपने लोकप्रिय धारावाहिकों में स्पेशल ट्विस्ट, नए प्रोमो और हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आ रहे हैं। दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। नई कहानियों पर चैनलों का फोकस जारी। स्टार प्लस, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और कलर्स जैसे बड़े चैनल अब पारिवारिक ड्रामा के साथ साथ सुपर नेचुरल, रोमांटिक और सोशल थीम वाले नए कंटेंट की ओर अधिक जोर दे रहे हैं। इससे दर्शकों को अलग अलग तरह की कहानियों देखने को मिल रही है। टीवी सितारों के BTS वीडियो बने सोशल मीडिया सेंसेशन। आज इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट पर कई टीवी कलाकारों के शूटिंग सेट से जुड़े बिहाइंड द सीन्स वीडियो और मजेदार क्लिप्स खूब वायरल हुई। फैंस अपने पसंदीदा कलाकारों के ऑफ स्क्रीन अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, छोटे पर्दे की दुनिया में आज भी बदलाव, प्रेरणा और मनोरंजन का शानदार संगम देखने को मिला। कहीं एक अभिनेत्री की सादगी ने दिल जीता, कहीं दिग्गज कलाकारों ने अपने संघर्षों से प्रेरित किया, तो कहीं नए रियलिटी शोज और डिजिटल कंटेंट ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। टीवी और OTT की दुनिया हर दिन नए रंग दिखा रही है और हम आपके लिए लाते रहेंगे सबसे ताजा, सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अपडेट्स। बने रहिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। फिलहाल सुनते हैं ये बेहद प्यारा सा गीत।

ऐसे बच्चे और उसके पालतू कुत्ते के बीच भावनात्मक रिश्ते की कहानी है, जिसमें दोस्ती, विश्वास और परिवार की अहमियत को खूबसूरती से दिखाया गया है। अगला है आर्यभट्ट का जीरो। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी खोजों से प्रेरित फिल्म। अगर आपको सुपर टाटी, रॉकेट्री जैसी फिल्में पसंद आई थी तो ये भी पसंद आ सकती है। अगला है हनुमान अंश। ये माइथोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ड्रामा फिल्म है। भगवान हनुमान की भक्ति, विश्वास और आध्यात्मिक प्रेरणा पर आधारित फिल्म। इस समय धार्मिक दर्शकों के बीच इस फिल्म की अच्छी चर्चा है। अगला है GND। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। कलाकार हैं आर माधवन, सत्यराज और प्रियमणि। ये फिल्म महान आविष्कारक GD नायडू के जीवन और उनके वैज्ञानिक योगदान पर आधारित है। घायल फिल्म का री रिलीज। सनी देओल के सुपरहिट क्लासिक फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आई है। अगर आप 90s के एक्शन फिल्मों के फैन हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। अब थिएटर्स के बाद रुक करते हैं OTT रिलीजेस की। आज OTT पर रिलीज होने जा रहे हैं ऑपरेशन सफेद सागर। ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। एक वार ड्रामा फिल्म है। कलाकार हैं सिद्धार्थ, जिमी सरगिल और अवे वर्मा। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक अभियान पर आधारित दमदार कहानी इस सप्ताह के सबसे चर्चित हिंदी OTT रिलीज में से एक है। अगला है मैं वापस आऊंगा। ये भी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा फिल्म है। इम्तियाज अली की संवेदनशील कहानी, जिसमें बिछड़ना, प्यार और वापसी की भावनात्मक यात्रा दिखाई गई है। और अगला है जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई आवर स्टिकी लव। ये कोरियन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। रोमांटिक के ड्रामा पसंद करने वालों के लिए इस हफ्ते की प्रमुख नई रिलीज है। और जियो हॉटस्टार पर ही द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी। ये एनिमेशन एडवेंचर फिल्म है, बच्चों और परिवार के साथ देखने के लिए शानदार एंटरटेनमेंट। और जियो हॉटस्टार पर ही एक हॉरर थ्रिलर द लास्ट हाउस रिलीज होने वाली है। अगर आपको हॉरर और सस्पेंस पसंद है तो इस वीकेंड की नई पसंद हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीकेंड मनोरंजन का पूरा खजाना आपके सामने है। थिएटर में नई कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। वही नेटफ्लिक्स, जियो स्टार और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी एक से बढ़कर एक नई फिल्में और वेब सीरीज स्ट्रीम हो चुकी हैं। अब बस अपनी पसंद चुनिए, पॉपकॉर्न तैयार कीजिए और इस वीकेंड को बनाइए पूरी तरह एंटरटेनमेंट वाला। दोस्तों, फिल्मी गपशप के अगले भाग में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत फिल्म मुन्ना भाई MBBS से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, आज के फिल्मी गपशप में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: दोस्तों इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने का जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को, बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टू सेंट लुइस रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाखोर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. The center has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface, UPI, and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate or MDR on notified electronic payment modes. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
3: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
1: The protest against the alleged irregularities in recruitment exams in Jharkhand entered its 14th day today in Ranchi. Six demonstrators continued their hunger strike in the state capital, Ranchi. The stalemate continues as the student leaders claimed that no invitation was received from the state government till yesterday evening. The ripples of the demonstration reached the Jharkhand Assembly yesterday, with opposition MLAs raising slogans on its premises on the first day of the monsoon session. US President Donald Trump has signed two executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the US immigration system. Home Minister Amit Shah has offered salutations to poet laureate Gurudev Rabindranath Tagore on his death anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that Tagore gave voice to the soul of India and infused new consciousness into the freedom movement through his writings. The Home Minister underlined that Tagore's literature remains an inexhaustible source of inspiration for millions of countrymen even today. Indian Grandmaster R. Pragananda has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Javakir Sindorov in the penultimate round. And that is the end of this news bulletin.
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
4: जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
5: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डिमांड कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों ये वो खास प्रोग्राम है जहां आपके मोबाइल से भेजे गए एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज बन जाता है रेडियो की महफिल का हिस्सा। आप भेजते हैं हमें अपनी पसंद का गीत, अपने नाम, अपनी जगह और किसी खास दोस्त परिवार या अपने लिए प्यारा सा डेडिकेशन, और हम लेकर आते हैं आपकी उन्हीं खूबसूरत मैसेजेस को आप सभी श्रोताओं के बीच। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का रेडियो डिमांड कार्यक्रम का पहला मैसेज, और ये मैसेज हमें आया है शिवा गोप, प्रेम गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चाईबासा झारखंड से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल से स्वागत है और आप सबकी फरमाइश है जीते हैं सांस से फिल्म का जूली जूली गीत को सुनने का, और इस धमाकेदार गीत को अपनी आवाजों से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति और अनु मलिक ने। तो शिवा, प्रेम, सिवान, संगीता, लिपि, दीपाली, आप सभी का बेहद बेहद धन्यवाद इस फरमाइश के लिए। आइए सुनते हैं आज के हमारे रेडियो डिमांड कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

दोस्तों इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है सोनितपुर असम से अमल बसुमतारी की तरफ से, और आपने गीत हमें फरमाइश की है तलाश फिल्म का जिंदगी से जंग गीत को, और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों बाइकोन संजली रूबी रमेश अंजलि हितेंद्र देवाशीष रूनू रूपाली अस्मिता सुनीता जोगेंद्र लवाइनो लकी और बिमल को। और इस खूबसूरत नगमे को अपनी मधुर आवाज से सजाया है अलका याग्निक ने। तो अमाल जी, आपकी इस दिल से जुड़ी फरमाइश और इतने सारे अपनों के नाम किए गए इस खूबसूरत डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 9436887808। आप इस नंबर पर अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें मैसेज के जरिए लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है गोलाघाट असम से। भेजने वाले हैं रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लक्की ने। और आप तीनों ने हमें संग फरमाइश की है संघर्ष फिल्म का पहली पहली बार बलिए गीत को सुनने का। और इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रद्धा पंडित ने। दोस्तों, प्यार के नए एहसास और दिल की खुशियों का बयां करता यह गीत अपनी मधुर धुन और खूबसूरत आवाजों की वजह से श्रोताओं के बीच खास पसंद किया जाता है। तो रमेश, रूनू और लक्की जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और अपने दोस्तों के नाम किए गए इस खूबसूरत डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों रुक करते हैं कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है हेलम असम से ज्योति सुरेन जी की तरफ से। ज्योति जी ने हमें सॉन्ग परवाइश की है, साजन फिल्म का तुमसे मिलने की तमन्ना है गीत को सुनने का। ज्योति जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों हम लौटेंगे रेडियो निर्माण कार्यक्रम के अगले मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। और दोस्तों, अब बारी है असम से आई एक और खूबसूरत फरमाइश और प्यारे से डेडिकेशन की। ये मैसेज हमें आया है जोगेंद्र रोंगपी, सोनालिंग टिफी और दोरम किरी रोंगपी की तरफ से, सारिहाजान कार्बे अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम से। आप सभी का अरुण FM 103.1 MHz पर दिल से स्वागत है। और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है बाइकॉन रमेश, रोनू, लक्की और बिमल को। आपने गीत चुना है अमीर गरीब फिल्म का, मोनी और सोनी की जोड़ी हसीन गीत को सुनने का। और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। तो जोगेंद्र, सोनाली और धूरम किरी, आपकी इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब बारी है असम से ही आए एक खूबसूरत मैसेज का। यह मैसेज हमें भेजा है बिमल बसुमतारी ने जुनाई मैसाकी सपोरी धेमाजी से। बिमल जी आपका अरुण एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने दिल तो पागल है फिल्म का टाइटल ट्रैक को चुना है और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों अमाल रमेश अंजलि हितेंद्र देवाशीष चंद्रकांत और अपने सभी दोस्तों को। और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। तो बीमल जी आपकी इस खूबसूरत फरमाइश और अपने दोस्तों के नाम किए गए इस खूबसूरत डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के एक और मैसेज के साथ। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड पर। दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है असम से ही, भेजने वाले हैं हितेंद्र दास ने। आपने शौक फरमाइश की है मुझसे शादी करोगी फिल्म का इस टाइटल ट्रैक को। तो हितेंद्र जी, अरुण एफएम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के रेडियो निर्माण कार्यक्रम के अगले और अंतिम मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है आरब जी की तरफ से, सैंकी पार्क ईटानगर से। आरब जी ने सॉन्ग फरमाइश की है बॉर्डर टू फिल्म का संदेश से आते हैं गीत को सुनने का। आरब जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आज के रेडियो निर्माण कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती टांगजंग तथा तकनीकी अभियंता मार्दो जर्दो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे लूसी जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। यह अधिनियम कल से प्रभावी हुआ। इससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ऐप के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आंदोलनरत छात्रों ने कल शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वे भी विद्यार्थी की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। इससे पहले जून में प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface, UPI, and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs, and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provisions that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate, MDR, on notified electronic payment modes. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ जीआरडब्ल्यूएम वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें
3: Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it and share it across the country and the world so that the skill and craftsmanship of India's artisans receive global recognition. The protest against the alleged irregularities in recruitment exams in Jharkhand entered its 14th day today in Ranchi. Six demonstrators continued the hunger strike in the state capital Ranchi. The stalemate continues as the student leaders claimed that no invitation was received from the state government till yesterday evening. The ripples of the demonstration reached the Jharkhand assembly yesterday, with opposition MLAs raising slogans on his premises on the first day of the monsoon session. US President Donald Trump has signed two executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it an unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the U.S. immigration system. Home Minister Amit Shah has offered salutations to poet laureate Gurudev Rabindranath Tagore on his death anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that Tagore gave voice to the soul of India and infused new consciousness into the freedom movement through his writings. The Home Minister underlined that Tagore's literature remains an inexhaustible source of inspiration for millions of countrymen even today. Indian Grandmaster R. Pragyanand has clinched the Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. The 20-year-old secured the championship after drawing against Uzbekistan's Grandmaster Yevakir Sindarov in the penultimate round, finishing the tournament with 23 points out of a possible 35. And that is the end of this news bulletin.

0: यागा छोड़ी है।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों इसी के साथ आपका स्वागत है आज के हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। मैं हूं आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी, और इससे पहले आपके साथ बने रहे थे आरजे कारगर जी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज के सभी कार्यक्रमों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता विश्वजीत। तो श्रोताओं आइए आप सभी को ले जाते हैं आज के जानकारी वर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के पास। तो आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर।
2: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी लहर में, जहां हम लेकर आते हैं म्यूजिक की वो खूबसूरत दुनिया जहां हर सुर के साथ एक कहानी जुड़ी होती है और हर गाना अपने साथ एक एहसास लेके आता है। मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी, और आप सब तैयार हो जाइए बॉलीवुड के यादगार मेलोडीज के लिए। तो चलिए आज का फिल्मी लहर की शुरुआत करते हैं म्यूजिक माइस्ट्रो AR रहमान की। उनकी म्यूजिक हमेशा से मेलोडीज, इमोशंस और एक्सपेरिमेंटेशन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन रहा है। तो आज उनके म्यूजिकल वर्ल्ड से लेकर आए हैं हम फिल्म हाईवे का ये सोलफुल ट्रैक, जिसका नाम है माहीवे। हाईवे की कहानी और उसके कैरेक्टर्स के इमोशंस को जिस तरह AR रहमान ने अपनी म्यूजिक से सपोर्ट किया है, वो तो इस फिल्म को और भी खास बना देती है। माहीवे में एक सॉफ्टनेस है, एक इमोशनल वार्मथ है और एक ऐसी मेलोडी है जो धीरे धीरे आपके साथ रहने लगती है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अपने घर पर रिलैक्स कर रहे हैं, या अगर आप ऑफिस में हैं, तो आप हेडफोन्स या रेडियो ऑन करके म्यूजिक सुन सकते हैं। वो तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि फिल्मी लहर की पहली लहर आप तक अभी पहुंचने वाली है।

दोस्तों, अभी आपने सुनी क्या मेलेडी अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में? तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं एक ऐसे गायक की जो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए काफी मशहूर है। तो अब फिल्मी लहर की अगली लहर में चलिए सुनते हैं एक बहुत ही यूनिक और सोलफुल आर्टिस्ट की, जो उनकी आवाज में एक रॉ एफर्टलेस क्वालिटी है जो पहली बार सुनने पर भी काफी पहचाना जैसा लगता है। और अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है फिल्म सुर द मेलेडी से। नाम ही बता रहा है कि फिल्म का सेंटर क्या है, म्यूजिक और मेलेडी। और इस फिल्म में लकी अली की जो आवाज है वो एक बहुत ही स्पेशल टच देती है। तो अगली मेलेडी के लिए तैयार हो जाइए, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए और अपनी सारी टेंशन को कुछ देर के लिए साइड में रखिए और बस ये म्यूजिक को एंजॉय कीजिए।

लेकर आ रहे हैं ऐसे गाने जो कभी आपको नॉस्टैल्जिया में ले जाएगा, कभी आपके मूड को फ्रेश कर देगा और कभी बिना किसी वजह के आपके चेहरे पे एक स्माइल ला देगा। तो जो अगला गाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक कैची मेलोडी, एक प्लेफुल सा फील और वो रेट्रो बॉलीवुड का चार्म है। मैं बात कर रही हूँ फिल्म जूली का, जो जिसका एक पॉपुलर गीत है, शायद आपने बचपन में सुना होगा। इस गीत का नाम है माई हार्ट इज बीटिंग। तो ये गाना अपने इंग्लिश लिरिक्स, मेमोरेबल ट्यून और रेट्रो वाइब की वजह से अपने टाइम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड नंबर था। तो अगर आपको पुराने बॉलीवुड के वो गीत पसंद है जिनके अंदर एक अलग ही एनर्जी और कैरेक्टर होता है, तो ये गाना डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी इंतजार के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाइए और सुनते हैं ये गीत जूली फिल्म का।

दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम।

0: गाड़ी नहीं यार, जीएफ हो तो ऐसी
1: ऐसी जीएफ के लिए जिगरा चाहिए। इफ यू थिंक यू गॉट इट, गो टेल हर।
0: ये ले।
2: लेट्स गो बॉयज।

0: श्रोता, आइए आपको ले जाते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है खजल, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल। यहाँ एक ऐसी महफिल, लव सिर्फ कहीं नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। गजल की दुनिया में हर शेर के पीछे एक कहानी होती है, हर लफ्ज में एक एहसास होता है, और हर सुर दिल को छू जाने की अपनी एक वजह रखता है। कभी मोहब्बत हो, कभी इंतजार, कभी तन्हाई और कभी पुरानी यादें। गजल इन सभी जज्बातों को बहुत खूबसूरती से अपने अंदर समेट लेती है। कुछ बातें लफ्जों से कहीं नहीं जाती, कुछ यादें दिल से भुलाई नहीं जाती, और जब गजल बन जाए दिल की आवाज तो वो महफिल कभी भूली नहीं जाती। और आज इस महफिल की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी आवाज के साथ जिसने गजल की दुनिया में एक खास मकाम हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जगजीत सिंह की। उनकी आवाज में जो ठहराव और सादगी है वो सीधा दिल तक पहुंचती थी। तो लीजिए आज की महफिल की पहली गजल, होश वालों को खबर क्या, जो है सरफरोज फिल्म से। अब बस अपने आसपास की आवाजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाए और इन सुरों में खो जाइए। सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में होश वालों को खबर क्या।

दोस्तों, उम्मीद है जगजीत सिंह की आवाज ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा, लेकिन गजल की ये महफिल अभी भी जारी है, क्योंकि जब बात दिल की हो तो गजल के बाद दूसरी गजल अपने आप ही आ जाती है। तो मोहब्बत का सफर भी अजीब होता है ना दोस्तों, कभी खामोशी कभी नसीब होता है। जो दिल में किसी को अपना मान ले उसके लिए हर पल करीब होता है। तो अब हमारी महफिल की अगली पेशकश है, छुपाओ कैसे भला अपना प्यार दुनिया से।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल दी आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर कार्यक्रम जारी रहेगा गीत माला के साथ।
1: Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला, जो है ट्रुप्स प्रोग्राम यानी फौजी भाइयों का दैनिक कार्यक्रम। ये कार्यक्रम खास तौर पे समर्पित है उन सभी बहादुर फौजी भाइयों को जो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। आप चाहे देश के किसी भी सीमा पर तैनात हों, किसी कैंप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हों, या देश की सुरक्षा के लिए दिन रात अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आप सभी के लिए आप सभी के नाम है। आपकी ड्यूटी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आप अपने फर्ज को इतने जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। सरहद पे जो खड़े हैं उनकी वजह से हमको सुकून खड़े हैं। देश की मिट्टी को सलाम है उन जवानों को जिनके हौसले से हिंदुस्तान आबाद है। तो दोस्तों, आज की म्यूजिकल जर्नी में हम लेकर आए हैं ऐसे गीत जो आपके अंदर के देशभक्त के जज्बे को और मजबूत करे, आपको अपने वतन की याद दिलाए और हर पल ये एहसास कराए कि पूरा देश आपके साथ है। ये गाना है हौसले का, वतन का, तिरंगे और जज्बातों का, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में अपने देश के लिए धड़कता है। तो मेरे सभी फौजी भाइयों, चाहे आप ड्यूटी पर हो या अपने साथी जवानों के साथ थोड़ा आराम का वक्त बिता रहे हो, तो रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब बजेगा वो गीत जो दिल में हिंदुस्तानी जगाए। तो आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का दैनिक कार्यक्रम, और आप पहला गाना सुनेंगे भगत सिंह, द लेजेंड ऑफ द भगत सिंह फिल्म से। इस गीत का नाम है रंग दे बसंती छोला।

की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला, जो है फौजी भाइयों का दैनिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर आप सुन पाएंगे कुछ पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
3: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
4: Char ke saath main connect leta. संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी, राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
5: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादा

0: योजनाओं के अनुरूप नहीं है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जाली नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब वक्त है आपको ले जाने का अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s, जहां आप पहला गीत सुनेंगे पत्थर के सनम फिल्म से, महबूब मेरे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s और हम सफर कर रहे हैं उस दौर का जहां हिंदी सिनेमा का म्यूजिक अपने एक बहुत ही खूबसूरत फेस में था। 60s के गाने सुनते ही जैसे एक अलग ही जमाना आंखों के सामने आ जाता है। सिंपल सी मेलोडीज है, दिल को छू लेने वाली गीत के बोल और वो आवाजें जो आज भी उतनी ही फ्रेश लगती हैं। कुछ गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बस उनकी यादें और गहरी हो जाती है और शायद इसीलिए 60s का म्यूजिक आज भी हमारे दिल के इतना करीब है। ये वो दौर था जब हर गाना अपनी एक अलग पहचान लेकर आता था और एक मेलोडी को याद रखने के लिए किसी एक्स्ट्रा स्पार्कल की जरूरत तो नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों अगर आप भी उन ओल्ड सोल्स में से एक है जो टाइमलेस मेलोडीज को दिल से एंजॉय करते हैं तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz पे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गाना जो है परोसन फिल्म से, कहना है।

0: श्रोता, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहिए सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज़। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हिंदी क्लासिक म्यूजिक ऑफ द 60s। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ हमारे आज के अगले सेगमेंट की ओर। अगला सेगमेंट है हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स, और जहाँ आपको मैं सुनाऊंगी बॉलीवुड की लेटेस्ट नई नई गीत जो आपको बेहद पसंद आएंगे। मैं हूँ आपके साथ आरजे लूसी। इस सफर में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल के बात। तो आइए सुनते हैं मोहित चौहान की सुरीली आवाज में रॉकस्टार फिल्म का ये बेहद ही सुंदर सा गीत जिसका नाम है तुम हो।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी सॉन्ग से आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकथा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
5: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है।

0: ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
1: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान की हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज और दोपहर समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ यानी 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, अब वक्त है म्यूजिक का एक ऐसे दौर में आपको ले जाने का। तो ये हमारा कार्यक्रम है हिट्स ऑफ द 90s, तो जहां हम शायद बहुत लोगों की बचपन की यादें, स्कूल के दिन, ग्रोइंग ईयर्स जुड़े हुए हैं। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम और ये सेगमेंट उन सभी 90s के म्यूजिक लवर्स के लिए है, जिनके लिए ये गाना तो सिर्फ सॉन्ग्स ही नहीं बल्कि यादों का एक पूरा चैप्टर है। 90s का म्यूजिक तो कुछ अलग ही था, जहां रोमांटिक मेलोडीज, एनर्जेटिक डांस नंबर्स, दोस्ती के गाने, हार्ट ब्रेक के वो सॉन्ग्स और वो अनफॉरगेटेबल ट्यून्स जो एक बार सुनने के बाद दिमाग में नहीं सीधा दिल में सेव हो जाता है। वक्त गुजर जाता है, बचपन भी पीछे छूट जाता है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें पल भर वही पुराने याद दिला जाते हैं। तो अगर आपने भी अपनी यंगस्टर वाली डेज में 90s के गाने सुने हैं, कैसेट या CD प्लेयर पर म्यूजिक कलेक्ट किया है, या फिर आपने सॉन्ग कॉपीज बनाए हैं, या फिर बस रेडियो पर अपने फेवरेट सॉन्ग्स का इंतजार किया है, तो ये सेगमेंट खास आपके लिए है। आज के ये गाने शायद आपको पुराने दोस्तों की यादें दिलाए, स्कूल या कॉलेज के दिन याद दिलाए, वो केयरफ्री वक्त जब म्यूजिक सुनना एक अलग ही सेलिब्रेशन हुआ करता था। तो चलिए, नॉस्टैल्जिया का वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए दोस्तों, और चलिए सुनते हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ द 90s का पहला गीत।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिट्स ऑफ द 90s से आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से न्यूज हेडलाइंस अंग्रेजी में, विश्व कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: सभा की शुरुआत करने से पहले आइए हम आपको हमारे आज के तीसरे प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के रूपरेखा से रूबरू करा दो। अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे हमारे सिंगपुर श्रोताओं का कार्यक्रम। वांगचो कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 3:40 पर। 4 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम ईदू मिसमी। तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 4:20 पर। तुस्सा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 4:40 पर। 4:45 पर और 4:55 पर भारी बारिश से आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नौकरी श्रोताओं का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 5 बजे। 5:20 पर आप सुन सकेंगे ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 5:40 पर आप लुट उठा पाएंगे। ग्रामीण श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा संध्या के 6 बजे। 6:30 पर आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का कार्यक्रम। 7 बजे आप सुन सकेंगे निशु भाई बहनों का कार्यक्रम। वीकेंड स्पेशल मैगजीन शो आप सुन पाएंगे रात्रि के 7:30 पर। 7:45 पर और 7:50 पर आप सुन सकेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचारों को। रात्रि के ठीक 8 बजे आप सुन पाएंगे संसद समीक्षा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप लुट उठा पाएंगे चंद खूबसूरत हिंदी फिल्मी गाने। 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे News@9 9:15 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। करंट अफेयर्स कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रात्रि के 9:30 पर। रात्रि के 10 बजे आप सुन पाएंगे संसद
1: श्रोता। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार न्यूज हेडलाइंस। मिश में कमान श्रोताओं का कार्यक्रम होता है खामती श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: तो अभी पेश है कार्यक्रम बॉलीवुड न्यूज़। तो दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स में आपका स्वागत है, जहां हम रोज लेकर आते हैं फिल्मी दुनिया की ताजा खबरें, गॉसिप, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स और ओटीटी की दुनिया में नए धमाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स की, जहां इस वक्त बड़ी फिल्म्स ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। एक तरफ एक्शन और ड्रामा से भरी हुई लेटेस्ट बिग बजट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रांग ओपनिंग ली है, जिसमें ऑडियंस को हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल स्टोरी लाइन का परफेक्ट मिक्स देखने को मिल रहा है। सिनेमा हॉल्स में क्राउड काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, स्पेशली वीकेंड शोज जो हाउसफुल हो जा रहे हैं। दोस्तों, इस हफ्ते एक मेजर वेब सीरीज रिलीज हुई है, जो है क्राइम जॉनर की है। इस सीरीज को ऑडियंस को काफी स्ट्रांग रिस्पांस मिल रही है, स्पेशली उन लोगों से जो इंटेंस स्टोरी टेलिंग और सस्पेंस पसंद करते हैं। स्टोरी ट्विस्ट और परफॉर्मेंसेस को काफी प्रेज मिल रहा है। एक और फैमिली ड्रामा भी अगर आप ओटीटी पे देखना चाहते हैं, तो शायद आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या डिज्नी हॉटस्टार लॉग इन करके आप अपने मनपसंद के कार्यक्रम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक।

0: fall in line, little boy.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। कुछ ही पलों में श्रोता आप सुन पाएंगे वांचो भाषा में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।
0: 'Cause you're gonna die.

नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में, जहां मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के कुछ ऐसे गाने जो आपके फ्राइडे नाइट को और भी म्यूजिकल बना देगा। चाहे आप लेटेस्ट बॉलीवुड के गीत पसंद करते हैं या फिर वो पुराने एवरग्रीन सॉन्ग्स जो आज भी सुनते ही दिल को खुश कर देता है, आज की महफिल में म्यूजिक के लिए सबकी जगह है। और आज क्योंकि फ्राइडे नाइट है तो सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से हैप्पी वीकेंड। उम्मीद है आपका पूरा हफ्ता अच्छा रहा होगा, और अगर हफ्ता थोड़ा टायरिंग था तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपना फेवरेट सॉन्ग के साथ वक्त बिताइए और वीकेंड को एक म्यूजिकल नोट के साथ शुरू कीजिए। तो दोस्तों, वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए और तैयार हो जाइए बॉलीवुड का सफर के लिए। लेटेस्ट हो, क्लासिक हो, रोमांटिक हो या एनर्जेटिक, आज हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में म्यूजिक बिल्कुल ऑन होगा।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत। श्रोता, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हिंदी फिल्मी गीतों का सफर जारी रहेगा। लेकिन इससे पहले आप सुनेंगे ईदू मिश्मी भाषा में समाचार। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए सुनते हैं ईद उमिस में कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर पुयला पुचे हिउ मित्र बुलेनी एतानिचे एदमिसमी आहोला किजी दरगालंबो बहा इनु मानब्रो खिया होलोमा माचिनो पुयला पुचे हिउ माचिनी सोदिसि मूवमेंट अखापगने योमुको होगा चाचा वालामा आजिकाचे इमुकेबाने इनितानि हैनलुमदे इनि एनाचिनाने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लाहेगाने आजिकाचे इमुमें nga tho tataya rojina lagada ahoga nga tho anasha nombro dowe arun dagada ne prime minister me lagane atika chi imuke bane nga da bu asita mane tala tapu ge lo puji na lagada ahoga aha thala puji janyu ipi machi ni ma to bopa anime ayo do ne buru ni ga ne ke panyor district yajali atiko nipko colony ma na hi अटोटा यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जे पी नड्डा में बुनि अथोपद आहोगा मिनिस्टर में रूमी आजब अनाशियालो चिचाबने इहो हे सेंटर में और पुगाऊद लाइबद आहोगा आ मुहे हो यूनियन मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन इकिसा मिनिस्टर आलम्रो एम एल आलम्रो दोने ईटानगर माचि आजालम्रो गो चौगा गने अली रुगा मिगा मा मुजिखी हरोजी ना लाइबादा आहोगा इंडिया में अग्नि फोर लाइगा मिसाइल आम्बो गे उड़ीसा माचि चांदीपुर अतिकोचि मिसाइल आम्बो ओचिमु रेंज मने प्रभा ओचि गने अथवाला ताने डिफेंस मिनिस्ट्री माचि में ला होगा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडो ने डीआरडीओ में अली प्रभा ओचिग ने एंगो खोवा बबदा ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह में लगादा आहोगा अब प्राउगे बने गवर्नमेंट में जीआईएसजी पे जनवर अरुण दगादा ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनाइक में बुनी ईटानगर माने इसरी इंडिया में जियो विजन इंडिया अमु माने सेमिनार अखगा माचे चाब महो लगाने अरुणाचल प्रदेश बुजी ए आंगो रूमी आतिका मा है टेक्नो आजोदो ने टेक्नो अंजी चिपे जने अरुण दगादा लाइपादा आहोगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आनब्रो में जी आई एस जी जने पोए अरुण दगादा ने गवर्नर में लगाने रेवेन्यू प्लानिंग रूरल डेवलपमेंट पब्लिक वर्क्स फॉरेस्ट एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट दोने पावर डिपार्टमेंट आलम्ब में जे आई एस जे पे आंदो जोने जिगा लाइबदा आहोगा सियांग डिस्ट्रिक्ट मा अचंबयागा बुरुगे में इमु अनाशिखो एहब मा आरोदो एथोजी ना लाने अरुणाचल प्रदेश माचे इंडिजिनियस फे दोने कल्चरल सोसाइटी इप्सेप मैन सियांग डिसी सोनालिका जीवानी आतोचा कासो लाख दोने एजन ब्राह पाउ हाथेगा बदा आहोगा आरो ताने नाने अलि आमे छगा मे तांदो प्राउजिदा ने दिसि मे लाओगादा आहोगा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट माचे क्वार्टर फाइनल मा ओना कोरिया माचे आसान आतिको ने मैच आखगा मा इंडिया माचे खानि मे एमगा मा रक्षिता रामराज मे तानवी शर्मा है अन्यहोखे हुलियो हुलुखी न्यान्यहोखे हुलुखी न्यान्यहोखे पॉइंट बने अनेक ने सेमीफाइनल

0: मा खेब महो इंडिया माचे अस्मिता चाली हमें जापान माचे हिना आके चे है अन्यो अन्यो कानी अन्यो खे होलो मा अन्यो खे हुलुखिनी पॉइंट मने अनेगने सेमी फाइनल मा इंडिया माचे रक्षिता रामराज को एमगाई बोदा ला होगा। अमेरिका माचे सेंट लुइस रेपिड दोने ब्रिज ग्रांड चेस टूर्नामेंट अखगा मा एमा बेगामू इंडिया माचे आर प्रगनंदा मैम उज्बेकिस्तान माचे जोबोखिर सिंदरोफ हनेगने चैंपियन सांबदा होगा। टूर्नामेंट माचे एम ए असो मंगा पॉइंट चिवो माचे प्रगनंदा मैम अन्य असो पॉइंट चिगने टाइटल हनेम बदा होगा। एतानी इद मिसमी आहो अलीमाओ दबाए
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वांचो भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको फिर स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत के। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त ड्राइविंग करते वक्त मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज सेफली ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए और अपनी नजर रोड पर ही रखिए। म्यूजिक का मजा भी लीजिए लेकिन सेफ्टी सबसे पहले। और अगर आप घर पर हैं या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं या अपने वीकेंड का कोई काम एंजॉय कर रहे हैं तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी वीकेंड। उम्मीद है कि आपको वीकेंड रिलैक्सिंग हो, खुशियों से भरा भरा हो और अच्छे म्यूजिक के साथ बना रहे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, अब हमारी हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स की महफिल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बस ये आखिरी गाने के बाद मैं आपसे विदा लूंगी और आज मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे अगर आप घर पर रिलैक्स कर रहे थे या आप काम कर रहे थे या अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे थे, तो आई होप बॉलीवुड के इन गानों ने आपकी फ्राइडे इवनिंग को थोड़ा म्यूजिकल और एंजॉयबल बनाया होगा। और एक बार फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज सेफली ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए और अपनी आंखें रोड पर रखिए। और जो लोग घर पे हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वीकेंड।

0: दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी, और इस कार्यक्रम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता विश्वजीत। तो दोस्तों, जाने से पहले बता दूं कि हमारी तीसरी प्रसारण सभा जारी रहेगी और उसके लिए आरजे नीलम स्टूडियो पर पहुंच चुकी है, तो मुझे दीजिए आज्ञा। शिवरात्रि, नमस्कार।
1: जिले की हर रचनाकार की अपनी आवाज।

अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जारी है। आप जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोता मित्र, आप सभी का इस तीसरे प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हाँ दोस्तों, इस सफर की मैं हूँ आपके अपने हम सफर, आपकी रेडियो साथी नीलम। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 4:29 हो रहे हैं। श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत से पहले आरजे लूसी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो के आगे की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए तथा मेरे परिचय के लिए। कहते हैं किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने भी पढ़ ली उसे बोलना सिखा देती हैं। चलिए श्रोता मित्र, इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसारण सभा की शुरुआत करते हैं और पेश करते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर,

श्रोता मित्र, आज 7 अगस्त है और हर साल इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। तो चलिए, इस अवसर पर आज हम जानेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इतिहास के बारे में, महत्व के बारे में और देश की समृद्ध विरासत के बारे में। भारत के हथकरघा बुनकर देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल, जी हां, 7 अगस्त को स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनाई का जश्न मनाने के अवसर के रूप में मनाया जाता है। ये दिन, जिसे पहली बार 2015 में मनाया गया था, ये स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत की याद में मनाया जाता है। भारतीय हस्तशिल्प सदियों पुरानी है और हमारे देश की बोलियों और विभिन्न प्रकार के भोजन की तरह ही ये भी अलग अलग है। भारत के प्रत्येक जिले में बुनाई की एक समृद्ध विरासत है जो पुरानी तकनीकों के साथ फलती फूलती रही है।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये पहला गीत सुई धागा, फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग दिव्या कुमार की आवाज में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य भारत के हथकरघा कामगारों को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है, साथ ही इस क्षेत्र में शामिल हथकरघा बुनकरों में सम्मान का भाव जागृत करना है। इससे संबंधित समारोह का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के महत्व और देश के सामाजिक आर्थिक विकास के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जी हाँ श्रोता मित्रों, पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2015 में चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान मनाया गया था, जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने खादी का इस्तेमाल करके इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने हाथ से काते गए कपड़े का इस्तेमाल किया और हर भारतीय से आग्रह किया कि वे अपना सूत काते और गर्व से खादी पहने। इस पहल के चलते लगभग हर घर में खादी बनने लगी। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे उड़ान फिल्म का ये बेहतरीन गीत अमित त्रिवेदी और अन्य साथियों की आवाजों में। जी हाँ श्रोता मित्र, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि आज मनाया जा रहा है, ये दिन भारतीय हथकरघा के समृद्ध इतिहास के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अहम है, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों ने आधुनिक वस्त्र उद्योग पर कब्जा कर लिया है। हथकरघा उद्योग देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत है और ये अवसर बुनकरों द्वारा बनाए गए समृद्ध रंग बिरंगे कपड़ों का जश्न मनाने का है। इस जानकारी को सामने लाना भी बहुत जरूरी है कि हथकरघा क्षेत्र महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 70% से अधिक हथकरघा बुनकर और इससे जुड़ी श्रमिक महिलाएं हैं। तो श्रोता मित्रों, आज हमने बात की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम के इस आखिरी मोड़ पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मिशन मंगल फिल्म से शिल्पा राव और अन्य साथियों की आवाजों में। इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पेमेंट में देरी और विवाद सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एमएसएमई डेवलपमेंट संशोधन विधेयक पारित किया। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश के कई पानीर जिले में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इंडिजिनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्साप द्वारा ईस्ट सियांग जिले में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के समर्थन के लिए जिला प्रशासन को 3.16 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की। भारत और चीन ने लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हालात पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और बिल्स खिताब जीता। और आसाम में हो रही कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहान महिला सिंगल्स की सेंट्रल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। लोकसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने यह बिल सोमवार को ही पास कर दिया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिल के पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिश की और विरोध कर रहे सदस्यों से सदन को चलाने देने की अपील की। उन्होंने हंगामा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह का विरोध देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताया और कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमेशा सत्र के दौरान संसद आते हैं और देर रात तक मौजूद रहते हैं। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई दिनभर के लिए स्थगित कर दी और कहा है कि सदन अब सोमवार सुबह 11 बजे फिर शुरू किया जाएगा। इससे पहले जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के ऐतिहासिक करो या मरो के आह्वान को याद करते हुए श्री बिरला ने इस आंदोलन को राष्ट्र एकता, साहस, सच्चाई और अहिंसा का एक स्थायी प्रतीक बताया। इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई में व्यवधान न डालने का अनुरोध किया।
2: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के

0: ज्योति सावित्री नागथन बागमारे ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधानों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बार बार होने वाले व्यवधानों के कारण नए चुने गए और प्रतिभाशाली सांसद सदन में अपनी बात नहीं रख पाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले के पोसा और निपको कॉलोनी में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से हुई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने गत 24 जून को आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया तथा राहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय निवासियों और आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं और चिंताओं पर विचार किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और क्षेत्र में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल कराने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, अन्य मंत्रियों, विधायकों तथा राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आपदा की स्थिति का आकलन कर सभी संबंधित विभागों को राहत पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि आपदा के बाद उत्पन्न होने वाले आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। इंडिजिनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्सा द्वारा ईस्ट सियांग जिले में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के समर्थन के लिए जिला प्रशासन को 3.16 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान की है। इस संबंध में चेक औपचारिक रूप से ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जीवानी को सौंपा गया। सहायता राशि प्राप्त करते हुए उपायुक्त ने इप्सा के इस मानवीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा समुदाय के कल्याण के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के सामूहिक प्रयास राहत कार्यों को मजबूत बनाते हैं और आपदा के बाद अपना जीवन दोबारा बसाने का प्रयास कर रहे परिवारों को सार्थक सहायता भी प्रदान करती है। भारत चीन सीमा पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 36वीं बैठक के दौरान भारत और चीन ने खुलकर चर्चा की और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पेश करते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में साल 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। हथकरघा बुनकरों को उनकी कारीगरी, इनोवेशन और भारत की हथकरघा परंपराओं को बचाने में उनके योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल थे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविधता हथकरघा बुनाई परंपराओं का जश्न मनाने के लिए 4 यादगार डाक टिकट भी जारी किए गए। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा सेक्टर न केवल आजीविका का साधन है बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा है कि हजारों सालों से हथकरघा भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत यात्रा का एक अहम हिस्सा रहा है।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर एक अंग्रेजी अखबार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का लिखा लेख शेयर किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री सिंह ने अपने लेख में हथकरघा को भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ताकतों में से एक बताया और देश की समृद्धि और विविध क्षेत्रीय कपड़ा परंपराओं पर प्रकाश डाला है। कपड़ा मंत्री ने भारत के युवाओं से अपील की है कि वे हथकरघा क्षेत्र के अगले अध्याय का आकार देने और बुनकरों की आजीविका को मजबूत करने के लिए विरासत और तकनीक, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को एक साथ लेकर आए। खेल जगत में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका के ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स का खिताब जीत लिया है। 20 साल के प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जोबो खिर सिंदारोव के साथ दूसरे आखिरी राउंड में ड्रॉ खेलकर

0: ते हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। समाचारों के बाद आइए सुनते हैं नौकते श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ रंगजा वन बंगा बाजी सान पोडाने दे नौकते प्रोग्राम चौतारन तजा अगस्त जंग वाणी के तारीख होकर बचा खबर को हंतेलियन तांग जंग मा तजा वा खबर रहें का Tajawa National Handloom Day Rangopa, Diakko, Ngangamijo, Asantan Tampa, Manirang, Prime Minister Narendra Modi Ma, Diakwa, Nogotanghinang, Rosabika. Tema video message wante Huan Lama, Ngeng Choye Tuktako, 1905 Rangpa, August Jang, Waningek Tariko, Nang Diakpa, British Dagwa Sadin Tachurang, Swadeshi Movement Pa, Banghuan Wa Ngale, Are Movement Huan Tako, dia kwa chento minyan he mejo participate pa wan kwa dang ko ngama modi ma cho ye thwe ka nga le dia ko athu ko tomin khatak te viewers tong wa ka he na meng nga nga mejo modot pa wan rang thong hun ming ngama prime minister lo jap chaming re wa nga le ara rang wo ko nga nga mejo wan ru to ko meng khadi handloom khat pa ri li ma video pa wan li ma post wan rang meng modi ma minyan he nang ro sab jaming re ka ara national handloom day rang wo pa अरे 1905 रंग पावा स्वदेशी मूवमेंट पा मानी ही सम्मा पारुआ वे जो अगस्त जंग तजावा रंग वो वानिंगिक तारीख को दिया को रंग मानी होने थोंगवा होम ले फैमिली वेलफेयर गले केमिकल ले फाइटलाइजर मिनिस्टर जेपी नड्डा कई पनोर डिस्ट्रिक्ट वा पोसा ले निपको कॉलोनी जंग को जून जंग रोकनी वन ब्ली तारीख को रंग डोंग पाला मा जोडोंग पिंडोंग डंगता को अजा थम थेपे छखमलम लुक्सुन दंग तुक्ता थे थेजा फोंसो गोमा अरे होंगंग तको जेपी नड्डा लोकल मिन्यान ले अरे को चमचोते तंखो मेंबर्स से दमनंग चुमेंग रेलामा थनिंग चमचो वाई का ngeng he तेमा अचो जजो रेवा अरे जुडोंग पिंगडोंग दंग तको लमको हुमपुंग पिकको ngale चेंचेन छखमलम लुक्सुन दंग तुक्ता हे तांगाक सिख लखमरंग थोंग गवर्नमेंट मा स्टेट गवर्नमेंट नंग होहाईपा इचु कोवन ने जोंगा मा नादा मा चो ये थुजो रेक अरे थे हे फोंग सो वंग मा को इटानगर नंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडु डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन मिनिस्टर्स ngale एमएलए ngale स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से दम नंग थेजा रिव्यू गोंग थुन वंते बंग होन जोमिंग रेवा नंग दिया ते रन लोंग छा खम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फोपा ओडिसावा चंडीपुर थेवा Integrated Test Range Pama Asantan Thamjo Latha Khapita Are Test Fire Hwanta Pa Strategic Force Command Khankajo Hwanwa Are Ranlong Chakam Ta Hong Hwan Vanira Chuangko Defense Minister Rajnath Singh Ma DRDO Nang Dangko Apjo Ngayka Isri India Ma Baja Itanagar Nang Geo Vision Itanagar Seminar Vante Khokam Losita Ko Governor Lieutenant General केटी प्रणायक में पार्टिसिपेट पा होनवा अरे सेमिनार को गवर्नर मंगिंग थोता को अरे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस पमा स्टेट पर गवर्नेंस होनवा ने नंग गले चेंचन अलम गिंग को हे फनसिवन डिसीजन कवन ने नंग काम डोंग पा चावन मिंगजो गमा गवर्नर मा लोजप जो रेवा इंडिजिनस फेथ ले कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इप्सप गमा इस यंग डिस्ट्रिक्ट वा रिलीफ ले रिहैबिलिटेशन कामरंग लाखरम छिहाजर रोक रंग गुनपा चुप सेवा का अरे गुनपा इस सियांग डिप्टी कमिश्नर सोनालिका जीवानी डाकनंग चोको वक्वा डीसी मा अरे गुनपा अरे डोनेशन गुनपा चौथा नुमा इप्सप नंग डंको अपजो गाय का गले अरंग रंग गुन डोनेशन है चम चोते है नंग चो सोक रंग वन थे काम डोंग पजो इचावन रंग गमा डीसी मा चो ये चुजो रेका कोरिया मास्टर्स कप रंग अथंग है आसान नंग बैडमिंटन टो लोमिंग वाई का को नंग दियक्ते बैडमिंटन लुअमते रक्षिता रामराज ले अस्मिता चालिहा ने वुमेन्स सिंगल नंग सेमीफाइनल नंग लावा वक्ता रक्षिता मा नंग दियक्ते जो तन्वी शर्मा पा 21-18, 19-21 मा जेन लामा सेमीफाइनल नंग वाई का गले अस्मिता चालिहा मवेन टॉप सिट हिना अके ची पा 20-22, 21-15 गले 19 मा जेन लामा सेमीफाइनल लंग क्वालिफाई पा डंग जो रेक ठजा अटाव ये नौनक ते खबर ला चुमता अरपा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़।

0: ซซึกโปรงกันมาบังก็ถ้าจะมาบอกว่ารุ่นยังสีบังชุดันมา
1: श्रोता मित्रों अभी आप सुन रहे थे बारी बारी से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

जी हाँ श्रोता मित्रों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त शाम के 5:06 हो रहे हैं। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ट्रैक। जी हाँ श्रोता मित्रों, आज भी हम आपके लिए कुछ चुनिंदे गीतों के साथ एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो उम्मीद है आप कार्यक्रम के आखिरी समय तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अतरंगी रे फिल्म से, फिल्म के गीत से श्रेया घोषाल की आवाज में।

श्रोता मित्र, इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, आइलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत रहती थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते हो, कोई काम करने को तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता और काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? हम बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, व्यक्ति ने यह उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती था। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही जोर जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वो तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़ी की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला, और बाड़ी के गेट को भी रस्सियों से कस दो, किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। ये सुन किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी, तिरपल से ढकी भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने जगह पर थी। बाड़ी का दरवाजा भी मजबूती से बांधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था, और अब वो भी चैन से

सो सकता था। श्रोता मित्रों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आने तय है। जरूरत इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वो आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है, इत्यादि। तो चलिए हम भी कुछ ऐसा करें कि कह सके, जब हवा चलती है तो मैं सो सकता हूं। श्रोता मित्र, उम्मीद है ये प्रेरणादायक कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कलंक फिल्म का एक गीत।

0: कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत,
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से,
2: प्यार भरे अल्फाजों में,
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब का ये आखिरी गीत नमस्ते इंग्लैंड फिल्म से आतिफ असलम और आकांक्षा भंडारी की आवाजों में। तो श्रोता मित्र, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्राइब यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम शाम की महफिल,

श्रोता मित्र, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम की महफिल का। जी हाँ श्रोता मित्र, कार्यक्रम शाम की महफिल प्यार भरा एक खूबसूरत संगीत का सफर। श्रोता मित्र, आप सभी का कार्यक्रम शाम की महफिल में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए श्रोता मित्र, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल और फरहान सहीद ने।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले रहे हैं इन खूबसूरत गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत का आप सुन रहे थे हीरोपंती फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में। तो इसी के साथ ही श्रोता मित्र आपको बताते हैं कि फिलहाल हम ले रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम शाम की महफिल में पुनः स्वागत है। श्रोता मित्रों, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में अगला गीत मधोशी फिल्म से, जिसे आवाज दी है साधना सरगम और उदित नारायण ने।

श्रोता मित्र, इस प्यारे गीत को आप सुन रहे थे शादी में जरूर आना फिल्म से यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में। जी हाँ, आपको फिर से बता देती हैं, आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे मेट्रो इन दिनों फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस गीत के साथ ही शाम की महफिल कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है प्यार भरे गीतों का ये सफर आप सभी को पसंद आए होंगे। आपको बता दें कि आगे भी हिंदी फिल्मी गीतों का ये सफर जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहे अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

श्रोता मित्र आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। जी हाँ, जिसके तहत आप सुन रहे हैं गाइड फिल्म के सदाबहार गाने। आपको बता दें कि गाइड 1965 हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक और क्लासिक फिल्म है। ये फिल्म आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड पर आधारित थी। इस फिल्म के निर्देशक विजय आनंद थे और इसे मुख्य रूप से देव आनंद ने निर्मित किया था तथा इसमें देव आनंद और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में संगीत दिया है एस टी बर्मन ने। तो इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है इसी फिल्म का एक और

0: श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे घर फिल्म के सदाबहार गीतों का। आपको बताते हैं कि इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस फिल्म के संगीत जी हाँ तैयार किया है आरडी बर्मन ने। श्रोता मित्र, और इस के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार।
1: से आकाशवाणी ईटानगर तनाक दिंगम आशेरूप कुमलिखी दौला सियम का आदि फुवम ईरोप दुंकराफ आदि लुतादम तत्पाय लुबिना से तबुक ताली भारत गुदाम सब मोले तकम लोसी लोट नेशनल हैंडलूम दे फम उगारूफ लोदुम बमदुम पेबोसिम भारत सौ मिपिमियम तकम ए लेकोप लोदुम मुनगदोप प्राइम मिनिस्टर भी आगम एम लुलंगे बतो प्राइम मिनिस्टर भी वीडियो मेसेस लोलुकान दो ने सिलोकेलोंगा रूस हो 1900 पाइप तिटाक देलो भारत सी ब्रिटिश रूल एम तोलिक माप स्वदेशी मूवमेंट एम कॉम यूरोप लेंटो इला सिलोके नेशनल हैंडलूम दे पेबोसोक लेको लेको फे स्वदेशी मूवमेंट एम कॉम मुपासी दुंग एमला लुकान बिदो आकोदा प्राइम मिनिस्टर भी लुतम दोने काउंटी सॉक ओपन आमी एकुसेरंग पुलन नाताकाम एम आयाबोसु पे आई दो

अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम आज के कलाकार का। कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ श्रोता मित्र, आज के हमारे कलाकार फनकार हैं। मशहूर निर्माता, निर्देशक और कॉमेडियन अभिनेता सतीश कौशिक, जी हाँ वे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। वो फिल्मों में सह कलाकार की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अलग और खास अभिनय से हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें कि सतीश कौशिक का जी हाँ जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा और दिल्ली से की थी। उन्होंने अभिनय की पढ़ाई NST यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से की थी। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक सह निर्देशक और कलाकार के तौर पर की थी। 1983 में आई शेखर कपूर की फिल्म मासूम में सह निर्देशक थे। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। तो चलिए श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही हम आपको सुना रहे हैं इसे फिल्म का ये गीत।

श्रोता मित्र, इसके बाद सतीश कौशिक ने हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्म जाने भी दो यारों के लिए अभिनय किया। ये सह निर्देशन और फिल्म के डायलॉग भी लिखे थे। बतौर निर्देशक उनका डेब्यू फिल्म रूप की रानी

चोरों का राजा। जी हाँ, इस फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद उन्होंने हम आपके दिल में रहते हैं, तेरे नाम, शादी से पहले और कागज सहित कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का ये गीत।

हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की युगल आवाजों में। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि शानदार निर्देशक के अलावा सतीश कौशिक बेहतरीन कॉमेडियन कलाकार भी थे। उन्होंने अभिनेता गोविंदा के साथ कई फिल्मों में कॉमेडी किरदार कर खूब सुर्खियां बटोरी। बतौर अभिनेता सतीश कौशिक को असली पहचान अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया से मिली थी। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम कैलेंडर था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने राम लखन, स्वर्ग जमाई राजा, साजन चले ससुराल, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, उड़ता पंजाब, छलांग सहित कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता है।

सतीश कौशिक ने टीवी में भी काम किया है। उन्होंने सब टीवी के शो द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा में बतौर नवाब जंग बहादुर के रूप में काम किया था। ये शो 2015 में आया था। साल 2018 में उन्होंने दिलजीत दोसांझ की मूवी सुरमा में पिता का किरदार निभाया। उन्होंने ब्रिटिश मूवी ब्रिकलेन में चानू अहमद का किरदार निभाया। वो दीवाना मस्तानी में पप्पू पेजर के रोल में नजर आए और सबको खूब हंसाया। इसके अलावा उन्होंने स्कैम 1992 वेब सीरीज में मनु मुद्रा का भी रोल निभाया था। सतीश कौशिक हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने अभिनय के साथ निर्देशन से भी प्रभावित किया। लगभग चार दशक लंबे करियर में उन्होंने कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई जिनमें से उनके कुछ किरदार आइकॉनिक माने जाते हैं। बतौर निर्देशक उनकी आखिरी रिलीज फिल्म कागज है जिसमें पंकज त्रिपाठी ने लीड रोल निभाया था। सलमान खान इस फिल्म के बतौर निर्माता जुड़े हुए थे। श्रोता मित्रों, उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम शशि कौशिक है। उनके दो बच्चे वंशिका कौशिक और सानू कौशिक हुए। सानू का निधन महज 2 साल की उम्र में हो गया था।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं रेन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक की। दोस्तों, महान कलाकार सतीश कौशिक ने 8 मार्च 2023 को अंतिम सांस ली। 66 यानी कि 66 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। भले ही वे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो किरदार उन्होंने पर्दे पर निभाए हैं, उसके जरिए वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिल में जिंदा रहेंगे। उन्होंने अपने हास्य, जी हाँ, अपने हास्य अभिनय से न जाने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही सतीश कौशिक पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार के अब हम अंतिम मोड़ पर आ पहुंचे और इसी के साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत तेरे नाम फिल्म से।

श्रोता मित्रों, इस अंतिम गीत को आप सुन रहे थे तेरे नाम फिल्म से उदित नारायण और राघव की आवाजों में। इसी के साथ ही हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता, निर्देशक और कॉमेडियन एक्टर सतीश कौशिक पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशे श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि आज किसी कारणवश आप निश्चित श्रोताओं का समाचार नहीं सुन पाए। जी हाँ, बने हुए हैं रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:05 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम।
1: Namaste listeners, a very warm welcome to all of you as we have come together for another edition of our weekend special magazine show. I'm your host Zuleika Topiwala.

0: अभी आप सुन रहे थे वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जुलेखा टोपीवाला। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम हो।
3: गीत संगीत,
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में,
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता मित्र, इस बेहतरीन गीत को, जी हाँ, आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा की आवाज में, दो दीवाने शहर में फिल्म से। जी हाँ श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही हम आपको सुना रहे हैं अगला गीत चांद मेरा दिल फिल्म से, राघव चैतन्य और जुनिता गांधी की आवाजों में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचा?
1: जी हां श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इसी के साथ ही अब समय हो गया है आपकी अपनी दिल की आवाज, आपका मनपसंद कार्यक्रम का, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। तो इंतजार अब हुआ खत्म, लीजिए प्रस्तुत है आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: गुड इवनिंग सर।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ।
2: जी रानू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
3: धन्यवाद, ठीक हूँ सर। मैं, आपके क्या हाल चाल?
2: जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक।
3: और आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
2: आज तो धूप खिला हुआ है, काफी गर्मी है।
3: आपके यहाँ धूप खिला हुआ है और हमारे यहाँ धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, दोनों।
2: अच्छा, बढ़िया मौसम है फिर तो।
3: हाँ मौसम ठीक है, बट बारिश की जरूरत है, आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा।
2: जी जी जी जी, हाँ जी। कल रात तक तो बारिश थी हमारे यहाँ, लेकिन आज सुबह धूप खिली है।
3: मुझे एक गाना सुनना है।
2: जी हाँ जी।
3: मूवी का नाम है, मूवी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन गाने के बोल बता देती हूँ।
2: जी जी जी, हाँ जी।
3: तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले।
2: ओके जी, जरूर सुनाएंगे।
3: यही सॉन्ग सुनना है मुझे।
2: ओके, और किसी को डेडिकेट करना है?
3: डेडिकेट तो नहीं, बस आपको और जो कॉलर सुन रहे हैं उन सबके लिए बस।
2: जी जी जी, तो रानू जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको

0: हेलो फरमाइश।
1: मेरे प्यारे प्यारे सर को मेरा प्यार भरो नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: जी तनुश्री जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसी हो आप?
1: तो सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ
1: जी सर। और आपसे बात हुई तो और भी बढ़िया लग रहा है।
0: जी हमें भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आज कौन सा गाना सुनना पसंद करोगी?
1: सर फिल्म का नाम है पति पत्नी और ओ, और गाने के बोल है अखिया मेरी पूछ रही है दिल को मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाया किथे लड़ाया कैसे तुझको मैं बताऊं राए मेरे तक तीन जाए नींदो चुराया तो मेरी नींदो चुराया वे धड़कने कहती है दिल तेरे दिल धड़कना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया गाना सुनना
0: जी,
1: है।
0: जी गाना भी बहुत बढ़िया चुना है और आपने गाया भी बहुत बढ़िया।
1: थैंक यू सर। और दोस्तों का नाम लेना चाहती
0: हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, फिर मेरे पापा है, भगवान सिंह परमार जी है, गंगाधर सावनकर जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिचरिया जी है, और आसम से मेरा भाई है अमल भट्टाचार्य, उनको भी डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, तो तनुश्री जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दिनेश
0: शर्मा, ओ के अपने भाल
1: भाल अपना भाल
0: हय मैं खूब भाल।
1: मैं ड्यूटी पर घर पालोहि।
0: अच्छा अच्छा, इतना घर पाइस न?
1: घर पालोहि, घर पर मैं बैंक काम तक बैंक काम तक जब लैस जाम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
1: अपना फोन नक भले ना मैंने
0: কৰ্মকৰ্তা
1: দীপালেকা মন্তু বৰুৱা হৰদুৱা কনদী দত্ত
0: শর্মা। ওকে, তো দিনেশ দা কল করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি আপনার পছন্দ একটা গানা শুনাই আছো।
1: ওকে, ধন্যবাদ।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव
0: जी। मनोज नामदेव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप? जी कैसे हो आप, सुनाइए।
1: बस सर जी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान के पास से। बढ़िया सर
0: जी, हमेशा ऐसा ही रहिए, हमेशा बढ़िया रहिए, हम यही दुआ करते हैं।
1: बिल्कुल सर। और आपकी याद आ जाती है सर तो क्या करते हैं, उठाया फोन लगा दिया, आपसे बात हो गई।
0: जी जी जी जी, जब भी हमारी याद आए आप हमें कॉल कीजिए, हम जरूर आपके फोन उठाएंगे।
1: बिल्कुल सर। क्या कहे, आपसे इतना अपार लगाव हो गया सर, क्या कहे सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, यही लगाव बनाए रखे हमेशा।
1: बिल्कुल सर
0: जी। तो कहिए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सदी आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा दामनी, उसमें गाना है कागा तोड़ गया मीठी बोली बोलकर।
0: ओके। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे इसी को?
1: जी हमारे भैया है मंकी नामदेव, मैंक नामदेव, राहुल नामदेव, शिवम नामदेव, और हमारे नरेश भैया जी है, और इतने मित्र इस प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं कि अगर नाम लेंगे तो आधे घंटा का प्रोग्राम इसी में बता जाएगा। इसी सबके लिए गाना डेडिकेट।
0: ओके।
1: और खास तौर पे आपके लिए।
0: जी मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना दामिनी फिल्म से।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी सर। जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। शुक्रिया सर। शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता सर।
0: जी, हमारे नियमित श्रोता शिवा लोहट जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: शुक्रिया सर जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आपसे बातचीत हो रही है तो और ज्यादा खुशी हो रही है और ज्यादा अच्छा लग रहा है सर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से कॉल करते रहिएगा, हम बातें करते रहेंगे।
1: जी बिल्कुल सर।
0: और आज कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: सर जी मौसम तो देखिए, बारिश वगैरह तो बिल्कुल हो नहीं रही है। MP की तरफ इंद्रदेव जी जो है रूठे हुए हैं।
0: ओके जी
1: जी तो वो कुल

0: मिला के सर जी ये है कि किसान अन्नदाता जो है हमारा भाई वो कहीं भी खुश नहीं है सर जी। जहाँ बाढ़ आ रही है तो वो भी हैरान परेशान है
1: जी।
0: और जहाँ पे बारिश नहीं हो रही तो वो भी परेशान है। फसल वगैरह कहीं देख रहे हैं बाढ़ वगैरह आ रही है तो उसमें भी नष्ट हो जाता है और बारिश नहीं हुई तो खेती उत्पन्न नहीं होगी, कीड़ा लग जाएगा, खराब हो जाएगी, दिक्कत।
1: तो हमारे किसान
0: किसान भाई परेशान
1: बहुत ही परेशान है जी जी जी। यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी बारिश हो ताकि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा आराम मिले
0: जी।
1: तो आज शिवाजी कहिए कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
0: सर जी मूवी रहेगी कल की आवाज।
1: ओके।
0: उसमें एक कुमार सानू जी की आवाज में गाना है कर ना सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी थी।
1: ओके जी जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: हमारे रहेंगे पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, मोहम्मद अरुण जी और हमारे मित्र रहेंगे भगवान सिंह परमार जी और अमल जी, विमल जी और हमारे तमाम सुनने वाले और स्पेशली सर आप
1: जी। मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवाजी बफट जी।

0: हेलो, फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, योगेश जांगरे जी।
1: जी बिल्कुल सही पहचान है।
0: जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: जी भैया, हम बढ़िया हैं और अभी तो फिलहाल घर ही में है।
0: ओके, आपके बारे में एक जानकारी मिली थी कि आपको गोल्डन बुक मिला है।
1: हाँ, एक हमारे साथी बोल रहे थे मेरे को
0: जी
1: आधा चाहिए करके,
0: हाँ,
1: तो
0: वही वही रानू
1: दे
0: गुप्ता जी।
1: देंगे उनको भी।
0: अच्छा, जी जी जी जरूर भेज दीजिएगा उनको।
1: जी,
0: हाँ जी, और ये किस चीज का गोल्डन बुक मिला आप?
1: ये भैया मतलब सबसे ज्यादा फोन कॉल करने के लिए है।
0: अच्छा, जी जी जी वाह।
1: आपसे मैं पहले भी इस बारे में बात किया था,
0: अच्छा, हाँ, एक बार बात हुई थी इसके बारे में। जी जी
1: 182 रेडियो स्टेशन से जुड़ता हूँ भैया, और लगभग लगभग 17,000 फोन कॉल होने को है।
0: बाप रे, मान गए भाई आपको तो।
1: जी
0: जी जी जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो कब कब
1: धन्यवाद।
0: तक भेज देंगे रानू जी को?
1: ये अब उनके यहाँ भेजने में तो थोड़ा सा समय लगेगा।
0: ओके ओके, जी जी जी जी हाँ
1: जी जी जी
0: ओके। तो आज कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे योगेश जी?
1: फिल्म आशिकी से सुनवा देंगे, नजर के सामने जिगर के पास।
0: ओके, और किनको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: रानू जी है और श्रीपाल गोयल जी है, हमारे मुकेश शर्मा जी हैं, संतोष वैष्णव जी हैं, और तमाम साथी हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के और आप लोगों के लिए भी।
0: ओके, तो हमें भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं शेख जफर हसन कुआर जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ।
0: जी शेख हुसैन साहब, आपकी आवाज़ तो मैं पहचान ही गया था। जी और सुनाइए, कैसे हो
1: जी,
0: आप?
1: अच्छे हैं।
0: ओके जी जी जी
1: जी आपकी आवाज में पहचानना क्या है, हम तो जाने पहचाने अनाउंसर है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी और सुनाइए क्या चल रहा है जिंदगी में?
1: क्या चल रहा सर, तो बैठ के ही चल रहा है सब, तो खेत का आपका सब काम उम हो गया।
0: ओके
1: आपका बुआई हो चुका?
0: अच्छा अच्छा जी जी जी
1: हाँ, इधर तो कुछ बारिश हो गई है।
0: अच्छा
1: हाँ, अब थोड़ी परेशानी जो थी सब दूर हो गई।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी बहुत ही अच्छी बात है
1: जी। और आपके भी न्यूज हमको मिल रहा, पेपर में भी मिल रहा, उधर तो बहुत पानी बरस रहा।
0: जी जी जी हमारे यहाँ तो भारी बारिश हो रही है।
1: हाँ बारिश हो रही है, हम तो पेपर में भी पढ़ रहे हैं और ऐसे न्यूज भी सुन रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी अच्छी बात है, सब जगह का खबर रखना चाहिए।
1: हमारा महीना बंधा हुआ है पेपर का।
0: ओके
1: हाँ, वो जाकर घर पर ले जाता है।
0: अच्छा जी जी जी जी
1: हाँ, अच्छी बस्ती है खासी, करीब 14,000 की जनसंख्या है हमारे बस्ती की।
0: अच्छा जी जी जी
1: हाँ, ये वार्ड नगर पंचायत है, हम लोग के स्क्वाड 12 वार्ड है।
0: अच्छा
1: जी
0: ओके
1: बहुत मजे का है, छोटा मोटा टाउन।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी बढ़िया बढ़िया जी।
1: ये तो स्वागत आपका।
0: हाँ जी, कभी समय मिला तो जरूर आएंगे घूमने के लिए। जी
1: ये सब मोहब्बत की बात है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी
1: जी
0: यही मोहब्बत का
1: है। जब मोहब्बत की जब बात चली तो मोहब्बत कब और किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता। मोहब्बत कब और किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता, ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता।
0: अरे बाबा जी
1: तो और रही बात आपका, एक शेर आपको और सुना देता हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी।
1: तो आंखों में मेरी ठहरो या दिल

0: उतर जाओ, आंखों में मेरी ठहरो या दिल में उतर जाओ, घर दोनों तुम्हारे हैं, तुम चाहे जिधर जाओ।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बहुत ही बढ़िया शायरी आप लेके आते हैं।
0: ना सवाल ये है कि आपका प्राइवेट चैनल हो रेडियो श्रीलंका या सरकारी, तो दोनों में जैसे आप अनाउंसर है, अनाउंसर के जैसा शेर सुनाता हूँ, मैडम आती है तो उनके जैसा सुनाता हूँ।
1: जी जी।
0: और आपको बता देता हूँ, सन 2008 से लेके अब तक मैं फोन फरमाइश से जुड़ा हुआ हूँ।
1: अच्छा, सन 2008 से?
0: जी।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। ओके
0: जी। अभी हमारा देखिए अभी चैनल जो है एफएम बर्ड है सासाराम जो जिला रोहतास है।
1: अच्छा जी
0: जी। कल ही रिकॉर्डिंग हुआ, कल ही आपका प्रसारित हमारा हुआ।
1: अच्छा अच्छा।
0: और उसके बाद उसका दूसरा भाग जो है शनिवार को होगा, मतलब 7:50 से लेकर 8:45 रात तक प्रोग्राम होता है बुधवार को और शनिवार को।
1: अच्छा।
0: और वैसे तो बहुत सारे स्टेशन के था हम आपको जुड़वा है।
1: जी जी जी जी
0: जी। और फिल्म का नाम बता देता हूँ।
1: हाँ जी कहिए।
0: फिल्म आई थी 1966 में, बदतमीज।
1: बदतमीज। ओके
0: जी। शशि कपूर और साधना थी इसमें। इसमें गाना जो है सर ये सब बहुत कम सुनने को मिलता है इस स्टेशन से।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, तो ये मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। हसीन हो तुम

0: मोहब्बत में हुक्म दोगे तो हंसते हंसते ये जान भी देंगे, हसीन हो तुम खुदा नहीं हो,
1: हसीन हो तुम खुदा नहीं हो। वाह वाह वाह,
0: शेर को सुनाया उसी से मिलता जुलता गाना भी मैं
1: जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं करता हूँ रेडियो, बहुत सारे रेडियो सब शेर सुनाता उसी के मुताबिक जो मैं गाना भी सेट कर देता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है हुसैन साहब जी,
0: सही नहीं कि जो उठाया वो गा दिया।
1: ओके जी जी,
0: गायक तो गा सकते हैं लेकिन शेर से टच करता हूँ गाना।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
0: हाँ जी सर, दोस्त है तो यही बात होती है, बहुत दूर से दोस्त है
1: जी,
0: पूरा मऊ उत्तर प्रदेश के उस्मान अली अंसारी, भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, अनवर बिहारी और गणेश दास बंगाली।
1: ओके, इन सभी साथियों के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को
0: जी,
1: जी तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रोग्राम में मेरे को शामिल किया।
0: जी, आप कॉल करेंगे और हम ना उठाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर शामिल करेंगे। जी
1: और मैं आशुतोष देवनाथपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी आशुतोष जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: अच्छा हूँ
0: जी,
1: मौसम भी बढ़िया है।
0: अच्छा,
1: ना गर्मी ना ठंड, ऐसा मौसम है, सुहाना मौसम।
0: अच्छा, सुहाना मौसम, बढ़िया बढ़िया।
1: धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है।
0: अच्छा, तो आशुतोष जी आज
1: आज मुझे लता जी का आवाज़ों में लता जी का बढ़िया एक गाना सुना दी।
0: जी जरूर सुनाएंगे, कौन सा गाना?
1: 1978 में रिलीज हुआ, फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की, टाइटल सॉन्ग सुना दी।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे, बहुत ही बढ़िया गीत है जरूर। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, और ये गाने आपको भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी अच्छा लगेगा।
0: जी जरूर अच्छा लगेगा। जी जी, हाँ जी,
1: अच्छा लगेगा, है ना ये गाना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स आनंद बख्शी जी ने और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने सुर से साजा इस गाने।
0: ओके जी,
1: और इस गाने को मैं पहले आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और आसाम से सुनेंगे अमल बिमल बसवसारी जी और है रमेश पात्र जी और प्रेमजीत चक्रवर्ती जी, जवाहरलाल बर्मन जी, और मध्य प्रदेश से सुनेंगे गजराज लोधी जी, राम नरेश जी, भगवान सिंह पारमार और राम बाबू शर्मा, केसरी सिंह राजपूत और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर चलना।
0: ओके, तो आशुतोष जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: नमस्कार।
0: ओके नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दादाबाई। आमी त्रिपुरा सा कुमारकांत से बुल्टीदार।
0: ओके।
1: पहली बार फोन लगाया।
0: अच्छा क्या नाम बोला आपने? क्लियर नहीं था।
1: बुल्टीदास।
0: ओके जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ दादा भाई, आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें?
1: जी।
0: ओके, तो सबसे पहले तो हम आपको और आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद दादा भाई।
0: ओके।
1: हिंदी ज्यादा आता नहीं।
0: हाँ हाँ है किचु ना, आपने बांग्ला बोले ना, हमें एक टू पारी तो।
1: अच्छा, सभी नाम चलते।
0: ओके।
1: গানের কলি।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8:22 हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं नमकीन फिल्म के गाने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम। जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आपको बता दें कि इस वक्त रात्रि के 9:01 हो रहे हैं और इसी के साथ ही लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। जी हाँ, बीते जमाने के अनमोल गीतों का खजाना, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं गुजरे दौर के कुछ चुनिंदे नगमे। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी परछाई फिल्म का। जी हाँ, ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। गीत के बोल है, एक मतवाला आज चला अपनी मंजिल को, किस्मत ने आसान किया है हर मुश्किल को। एक मतवाला आज चला अपनी मंजिल को।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे आपकी परछाइयां फिल्म के गीतों का। जी हाँ, मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोता मित्र, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में।

अरुण FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। जी हाँ श्रोता मित्र, इस गीत को आप सुन रहे थे CID फिल्म से बुझ मेरा क्या नाम रे, शमशेद बेगम की आवाज में। श्रोता मित्र, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का पुनः स्वागत है। जी हां श्रोता मित्रों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। श्रोता मित्र, लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे काला बाजार फिल्म के गीतों का। इस आखिरी गीत को आवाज दी है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की समाप्ति पर अब हम आ पहुंचे हैं और आप सभी से बिछड़ने का वक्त भी हो चला है। जाने से पहले बता दें कि इस प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादन गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता पीबी त्योरी और साथ ही अन्य सहकर्मी। हमेशा की तरह कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप जुड़े रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता मित्रों, हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे कल प्रातः 5:48 पर, यानी हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखे अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: FCRA1,
1: जी
0: इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनजीओस, 3.7 मिलियन रफली रजिस्टर्ड. एंड सेकेंडली, इफ वी कंपेयर दैट टू चाइना एंड द यूएस, चाइना हैज अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एंड अगेन इट इज सुपरवाइज बाय देयर फॉरेन मिनिस्ट्री, एवरी पेनी कमिंग थ्रू द फॉरेन फंडिंग.
1: जी
0: सिमिलरली, देर इज अ फारा लॉ इन द यूएस, एंड अगेन इट इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट सेंट्रलाइज लॉ, सो एवरी पेनी कमिंग इन द नेम ऑफ सोशल वेलफेयर इज स्क्रूटिनाइज. सो बिकॉज इट इज नाउ लिंक टू द इंटरनेशनल अफेयर्स, दैट इज वाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस
1: जी
0: स्मॉल
1: प्लीज
0: कंपेरिजन.
1: प्लीज
0: आई एम नाउ कमिंग टू द एमएसएमई डेवलपमेंट बिल. अगेन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस बिल हैज बेसिकली क्लासिफाइड एंटरप्राइजेस एज एमएसएमईज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्विपमेंट्स इन केस ऑफ सर्विसेस.
1: जी
0: सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई इटसेल्फ हैज चेंज विद दिस, बिकॉज नाउ इन्वेस्टमेंट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लांट और मशीनरी और इन केस ऑफ इक्विपमेंट्स. सो दिस रिमूव्स द अर्लियर थ्रेशोल्ड्स एंड मॉडिफाइज द क्राइटेरिया, एंड नाउ इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट टर्न ओवर, इवन द इन्वेस्टमेंट मेड्स. सो अंडर दिस एक्ट, नाउ अ पर्सन इंटेंडिंग टू एस्टेब्लिश एमएसएमई कैन बी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. सो इट इज बेसिकली अ प्रमोशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. द बिल ऑल्सो एड्स दैट एवरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मस्ट सेटल ऑल इनवॉइसेस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेस फ्रॉम एमएसएमई थ्रू ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम. सो अगेन, दिस इज आरबीआई रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म. सो एमएसएमईज कैन नाउ रेज फंड्स फ्रॉम फाइनेंसर्स अगेंस्ट इनवॉइसेस ड्यू फ्रॉम बायर्स. सो इट ब्रिंग्स इन मोर लिक्विडिटी, इट एनकरेजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इट ऑल्सो सेट्स द टाइम लाइन फॉर मीडिएशन इफ देर इज एनी इश्यूज रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडर एंड रेफर टू द रिलेटेड टू पेमेंट डिस्प्यूट्स. देन इन 90 डेज दैट दिस हैज टू बी फिक्स. सो ऑल दीज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग, वन इज रिलेटेड टू क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेकेंड इज रिलेटेड टू सेटलमेंट, एंड थर्ड इज रिलेटेड टू द मीडिएशन. दिस बेसिकली गिव वेरी वेरी एनेबलिंग प्रोविजन रिलेटेड टू द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमईज.
1: Absolutely. Shubham, your views on the same. How important is this bill and how important overall is the micro, small and medium enterprises when the government talks about inclusivity, when the government talks about the sustenance of employability? How important is the sector and this related bill?
2: This bill that has been passed by the Parliament, it replaces the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act of 2006.
1: Ji.
2: Now, what does that do? It essentially says, so it's a 20-year act that has been changed. And the big changes that comes in, Prafulla so made the points, is that essentially it makes the operating conditions for MSMEs easier. How? First thing, one of the biggest challenges of the micro enterprises and even the small and medium enterprises is the fact that they raise bills, they sell goods, they raise bills, but often those bills are not cleared in time. The bill now says that every central publicity enterprise, whenever it buys anything from the MSMEs, that bill has to be put up on what is called a factoring market, which is a trade receivables discounting system. What does that mean? That the moment the bill is raised by a company and has been accepted as a bill by the public sector enterprise, the bill, way before it's been paid or cleared, the bill can now be used by the micro enterprise, small enterprise, on a market to be sold. So, for instance, a company has raised a bill of, say, 5,000 rupees. That small enterprise does not need to wait for 60 days to get the money from the central public sector enterprise. Instead, it can simply go on to this market and sell the bill. So there's somebody else who's buying the bill and will sell the bill at discounts. Instead of, say, getting 5,000 immediately, it might get 4,500 or it might get 4,400. But the point is it has got cash immediately. Now that reduces their working capital pressure tremendously. That's a discounting facility that allows them to create it so that market becomes robust. And those who buy the bill, they will then have the capacity, because this will be the financial institutions. And the financial institutions will then push the enterprises to clear the bill, because the bill has been recognized as a bill. So the micro enterprises, so the small enterprises are freed of the pressure of having to wait for when their money will be coming. That's a very big change. The second thing is that the definition itself of the small enterprises has been made much more flexible. The Act had classified MSMEs

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई है।
0: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जैम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी

संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: respond to all issues raised in the House. India's market regulator SEBI has said in its annual reports that the capital markets remained resilient during the financial year 2025-26 despite global uncertainties. It said India retained the top position globally in the number of initial public offerings and ranking third in funds raised. According to the report, despite decline in corporate bond mobilization by 8.4% to 9.1 lakh crore rupees, primary equity market remains strong. At the Asian Junior and Youth and Junior Weightlifting Championships in Tashkent, India's Thitli Maji clinched a silver medal in the women's 45 kg category, marking an impressive start for the country. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर मुख्य समाचार विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही का आह्वान दोहराया हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खुलने की उम्मीदों के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता अब समाचार विस्तार से विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले एक प्रमुख संगठन ने पाकिस्तान से विदेशी मीडिया सुविधा दिशा निर्देश 2026 वापस लेने की मांग की है संगठन ने इस दिशा निर्देशों को बहुत कठोर बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति की रिपोर्टिंग पर सेंसरशिप लगाई जाएगी संगठन के अनुसार पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनावी सुधार की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित बर्बरता की खबरें प्रकाशित की साथ ही वहां मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं संगठन ने कहा है कि ये नए दिशा निर्देश ऐसे समय लागू किए गए हैं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र में अशांति लगातार बढ़ रही है भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा व्यापार के निर्बाध प्रवाह का लगातार समर्थन करता है भारत ने सभी पक्षों से नागरिक अवसंरचना नागरिक जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाने की भी अपील की है श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और

0: ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर कहा है कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा है कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। खाड़ी देशों और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौते के करीब पहुंचने की खबरों के बाद कीमतों में गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल 0.8% गिरकर $81.86 प्रति बैरल और WTI कच्चा तेल 0.3% की गिरावट से $77.08 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। केनिया के अम्बोसेली राष्ट्रीय उद्यान में पिछले महीने पास के खेतों में टमाटर खाने के बाद 16 हाथियों की मौत हो गई। केनिया वन्यजीव सेवा ने बताया कि प्रारंभिक प्रयोगशाला परीक्षणों में साइनाइड पाया गया। पोस्टमार्टम जांच में हाथियों के पेट में टमाटर मिले। पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि मरने से पहले जानवरों में लकवा और सांस लेने में गंभीर कठिनाई के लक्षण दिखाई दिए। केनिया वन्यजीव सेवा में पशु चिकित्सा सेवाओं के डॉक्टर इसहाक लोकोलूल ने कहा कि प्रारंभिक निष्कर्ष साइनाइड विषाक्तता की ओर इशारा करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में इबोला मामलों की संख्या 4,000 का आंकड़ा पार कर गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इबोला के कुल मामलों की संख्या 4,053 तक पहुंच गई है, जिसमें 1,850 मौतें भी शामिल हैं। फिलहाल 694 मरीज आइसोलेशन में हैं या अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि 793 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। भारत की व्यापारिक और उद्यमशील क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के संयुक्त देखरेख में होने वाला इस महोत्सव का उद्घाटन 12 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अधिक जानकारी हमारी संवाददाता नीतिका से।
1: यह आयोजन भारतीय उत्पादों, सेवाओं, MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और कारीगरों को देश और दुनिया के बाजारों से जोड़ने का मंच बनेगा, जहां वे अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगे। महोत्सव में 1,000 से अधिक प्रदर्शकों, 40 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों और लगभग 10 लाख आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापार महोत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि नए भारत की आर्थिक शक्ति, आत्मविश्वास, नवाचार और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का उत्सव है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि यह महोत्सव भारतीय कारोबार को नए बाजार, निवेश और वैश्विक साझेदारियां उपलब्ध कराने के साथ मेड इन इंडिया को मेड फॉर द वर्ल्ड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएगा।
0: भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। इसी स्पर्धा में परिष्मिता गोगोई चौथे स्थान पर रही। ये प्रतियोगिता 14 अगस्त तक खेली जाएगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिया ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रक्षिता ने तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने हिना